मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 29वीं तिथि तदनुसार 16 मई सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 और 45 सेकंड हुए हैं। अब आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समाचारों के तुरंत बाद FM बैंड 103.5 MHz पर विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले होगा।

0: मंत्री का स्वागत किया। दो दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोल

0: एम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट UG परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन। शिखर पर पहुंचने के लिए ताकत होनी चाहिए, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपकी सफलता को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य का शिखर। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से श्रोताओं अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण। यह केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि मन को शुद्ध करने, अहंकार को मिटाने और परमात्मा में लीन होने की एक दिव्य अवस्था है।

अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, स्वर है भूपेंद्र सिंह का।

वन गमन के लिए तैयार श्रीराम माता कौशल्या से विदा ले चुके हैं, किंतु साथ जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ पत्नी सीता से माता की उपस्थिति में कुछ भी कहने में उन्हें संकोच हो रहा है। उधर समय अपनी गति से निकला जा रहा है, अतः सीता के लिए उनकी सिखावन भी अनिवार्य है कि यदि वो अपना और पति का कल्याण चाहती हैं तो उन्हें श्रीराम की आज्ञा मानकर घर पर ही रहकर सास की सेवा करनी चाहिए। आदर पूर्वक सास ससुर के चरण

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान स्वर्था भूपेंद्र सिंह का। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनों भाइयों, राम राम। कृषि की बातें आज जिक्र करेंगे गेहूं के बीज का सौर उपचार, इसके बारे में। किसान भाइयों, विशेष रूप से खुली कंगियारी का जो रोग है, इसने खत्म करने खातर एक ही प्रभावी, सस्ता और जैविक तरीका माना गया है। इस तकनीक ते सूर्य की गर्मी का उपयोग करके बीज के अंदर जो फफूंद छुपी है उसने हम मार दिया हाँ। यो बढ़िया तरीका है, यो अपने किसान भाइयों ने इसमें कुछ लागत भी नहीं लगती, यो अपना लेना चाहिए। टाइम का जब जिक्र करा तो यो उपचार मई और जून के महीने में करा जाओ है, जो बहुत तेज धूप पड़ती हो। गेहूं के बीज ने 5-6 घंटे खातर भेज दें और फिर उसने सुखावे। बीज में तो पानी काट लें सारा, और दोपहर की जब तेज धूप हो ना, एक पक्के फर्श पे चाहे तरपाल बिछा लें, उस पर पतली सी परत बनावे। घनी मोटी परत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो सूर्य की जो गर्मी है वो नीचे तक जानी चाहिए। एक पतली सी परत बना के उसने अच्छे डाल छदा दें। जो फर्श है वो भी अच्छा थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, और तरपाल है तो वो भी अच्छा बड़ा ले लें। तेज धूप में 4-5 घंटे तीन यो सूखना चाहिए। इस चीज का हमने जरूर ध्यान करना है, यो जेकर पहले आ लिया है कि परत इतनी पतली बनावे और 4-5 घंटे लाग जाने और तो वो सारा सूख जा। जब नहीं सूखेगा तो फिर हम उसने न्यू का न्यू इकट्ठा कर देंगे, तो अगले दिन देखेंगे तो उसके उसमें तो कुछ दाने खराब हो जाए। एक के दिन में 4-5 घंटे में सूख जाना चाहिए। इस बात का हमने ध्यान करना है कि जो हमने बीज सुखाया है ना, उसने इस हिसाब तक सुखावे जितनी उसमें नमी की जरूरत है, सिर्फ वो उतनी नमी बरकरार रहे, ज्यादा नमी उसमें ना हो। जब ज्यादा नमी होगी तो उसमें कीड़े और फफूंद दोबारा लग सके है। जो बीज फिर हमने उपचारित कराया है उसने सूखी जगह पर भंडारण कर दे। कोई इसी जगह देख ले जिस सूखी हो, हवा का आवागमन तो उस जगह पर जरूर हो जा, लेकिन नमी ना हो उस जगह पर हम उसका भंडारण कर सका हाँ। इब इसके फायदे के हैं भाई, न्यू कहेंगे कि यू काम हम करते लें, इसका फायदा क्या होगा? फायदा न्यू होगा, यू प्राकृतिक और जैविक तरीका है। इसके बाद फिर रसायन की जरूरत नहीं पड़ती, इसके अंदर कोई फफूंदनाशी, कोई और खुली कंगियारी जैसा कोई रोग है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई जैविक उसमें दवाई डाली जा। लूज समट का रोग तो बिल्कुल जड़ते खत्म हो जाएगा न्यू मान के चलियो, और हमारा कुछ उसमें पीसा भी नहीं लगता। और सौर ऊर्जा तो उपचार करके भंडारण कर लें, फिर जब हम उसने बोएंगे ना तो उस टाइम पे एक पर बीज उपचार जरूर करेंगे। जब बीज उपचार और कर लेंगे ना तो फिर कति निश्चित रूप से यू फायदा हो जाएगा।

0: कि भाई मारा बीज बढ़िया जमाव लेवे लेवे और इसमें कोई दिक्कत आगे जाकर बीज जनित नहीं आओगी। और किसान भाइयों जो बीज है अपना उसका तो ध्यान हमने रखना है, बाकी अपना जो और भी गेहूँ है ना उसका भी हम उपचार यो इस तरह का कर लें तो बहुत ज़रूरी है। जितना भी मर्द रहे जगह है जो भंडारण की जो जगह है उसके हिसाब से या फिर जितने गेहूँ हमारे पास हैं एक बार सूर्य की गर्मी तो उसका ज़रूर लगा लें। छोटे मोटे कोई रोग कोई बीमारी कोई आग जा का आने वाली जो दिक्कत है वो कति खत्म हो जाएंगी। ध्यान इस चीज़ का जरूर रखें कि उसने भिगो ले 4-5 घंटे खातर और पानी काट लें सारा, कोई से पतले कपड़े में उसने भिगोएं जैसे वो पानी उस कपड़े में नीचे निकल जा और गेहूँ हमारा रह जा और थोड़ी बहुत को धूल माटी भी उसमें लाग रही होगी ना तो वो भी पानी के लाग के और वो निकल जाएगी, साफ सुथरा हमारा गेहूँ हो जाएगा। खाने में भी जरूरत पड़ेगी तो भी बढ़िया रह जाएगा और आगे बीज खातर जरूरत पड़ेगी तो फिर बढ़िया रवे रहेगा। तो यो एक तरीका था जो सौर ऊर्जा तो उपचार का है, इसमें ना हमारी कोई लागत लगती ना कोई घना सा टाइम लगता ना घनी मेहनत लगती, आगे जाकर आने वाली किसी बड़ी समस्या से हम बच सका हाँ। तो भैया तो यह सलाह देंगे कि एक दिन ला के मौका और जैसे ईब तेज धूप पड़ने लग रही है बहुत ज़बरदस्त धूप पड़े है तो ये बिल्कुल सही मौका है, इस टाइम पर आप अपने बीज का उपचार कर सको हो और बाकी जो गेहूँ है उनका भी उपचार करना चाहो तो जरूर कर लो।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि की बातें जिसके अंतर्गत आज आपको गेहूं के बीज का सौर उपचार विषय पर जानकारी दी गई। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, 7:00 हिंदी समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

आर, एलपीजी आपूर्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोलियम के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक में मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रात 10 बजे सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती आप सुन सकते हैं रात 9:30 बजे। दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

शाम 5:30 बजे युवा संसार कार्यक्रम में सुनेंगे रोजगार समाचार विशेषांक। सुबह सवेरे कार्यक्रम को सुना जा सकता है प्रातः 7:30 बजे। खेत खलिहान कार्यक्रम में दिन में 2:30 बजे चर्चा का विषय रहेगा कृषि यंत्रों की देखभाल।

शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में मक्का की चारे व दाने के लिए काश्त, इस विषय पर डॉक्टर मेहर चंद कम्बोज से बातचीत सुनेंगे। सुगम संगीत कार्यक्रम को सुना जा सकता है प्रातः 7:15 पर और रात्रि 8:25 पर।

फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सबरस आप आनंद लेंगे। इस कार्यक्रम का प्रातः 9 बजे चित्रपट संगीत कार्यक्रम को सुनेंगे दिन में 1:10 पर और देर शाम 7:30 बजे श्रोतागण समय रहेगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

एक फिल्म से कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात 9:15 पर। दिन में 12:30 आप सुनेंगे हरियाणवी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम पसंद अपनी अपनी।

आपकी पसंद। हरियाणवी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम श्रोतागण सुनेंगे शाम 7 बजे ग्रामीण संसार कार्यक्रम में। लोक संगीत कार्यक्रम में प्रातः 8:30 बजे आज हमारे कलाकार रहेंगे जगबीर सिंह बहलंबिया और साथी।

अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे कलाकार रहेंगे राजन शर्मा। आप सुनेंगे इनके गाए हुए भक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम सुगम संगीत। हमारे कलाकार थे राजन शर्मा। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।

श्रोताओं, सिक्किम स्थापना दिवस आज के दिन अर्थात 16 मई को मनाया जाता है। सिक्किम नामग्याल राजतंत्र द्वारा शासित एक स्वतंत्र राज्य था। 1975 में हुए जनमत संग्रह के बाद ये भारत में विलीन हो गया। इस जनमत संग्रह के बाद राजशाही का अंत और भारतीय संविधान के नियम प्रणाली के अंतर्गत यहाँ प्रजातंत्र का उदय हुआ। अंगूठे के आकार का ये राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर पूर्व में चीनी तिब्बत क्षेत्र और दक्षिण पूर्व में भूटान से घिरा हुआ है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य इसके दक्षिण में है। अंग्रेजी, नेपाली, लेप्चा, भूटिया, लिम्बू तथा हिंदी इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं, परंतु शासकीय कार्य में अंग्रेजी का ही प्रयोग होता है। हिंदू धर्म और वज्रयान बौद्ध धर्म यहाँ के प्रमुख धर्म हैं। राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर गंगटोक है। सिक्किम नामग्याल राजतंत्र द्वारा शासित एक स्वतंत्र राज्य था, परंतु प्रशासनिक समस्याओं के चलते तथा भारत में विलय और जनमत के कारण 1975 में एक जनमत संग्रह के साथ भारत में इसका विलय हो गया। उसी जनमत संग्रह के पश्चात राजतंत्र का अंत और भारतीय संविधान की नियम प्रणाली के ढांचे में प्रजातंत्र का उदय हुआ। सिक्किम की जनसंख्या भारत के राज्यों में न्यूनतम है तथा क्षेत्रफल गोवा के पश्चात न्यूनतम है। अपने छोटे आकार के बावजूद सिक्किम भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी विविधतापूर्ण है। कंचनजंगा, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम के उत्तरी पश्चिमी भाग में नेपाल की सीमा पर है और इस पर्वत चोटी को प्रदेश के कई भागों से आसानी से देखा जा सकता है। साफ सुथरा होना, प्राकृतिक सुंदरता, पूंछी एवं राजनीतिक स्थिरता आदि विशेषताओं के कारण सिक्किम भारत में पर्यटन का प्रमुख केंद्र है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। यूनेस्को के अनुसार इसका उद्देश्य सहयोग को मजबूत करना और शांति एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी क्षमता का लाभ उठाना है। प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियां, शिक्षा, विज्ञान, कला, संस्कृति, सतत विकास, संचार, ऊर्जा और चिकित्सा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह वार्षिक उत्सव यूनेस्को द्वारा आयोजित किया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस समारोह यूनेस्को द्वारा 16 मई 2018 को आयोजित किया गया था। 1960 में उस तारीख की वर्षगांठ जब इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी थियोडोर मेमन ने अपने पहले लेजर से दोलन और आउटपुट सफलतापूर्वक प्राप्त किया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2015 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष के बाद मनाया गया। इस दिवस का प्रस्ताव घाना, मैक्सिको, न्यूजीलैंड और रूसी संघ द्वारा रखा गया था और इसे यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड द्वारा समर्थित किया गया था। यूनेस्को महासभा ने नवंबर 2017 में प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। प्रकाश और प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियों के अध्ययन में हमें दुनिया को असाधारण तरीकों से बदलने की मदद की है। प्रकाश आधारित जो एक्सरे मशीनें हैं, टेलीस्कोप है, कैमरे हैं, इलेक्ट्रिक लाइट है, टेलीविज़न स्क्रीन इसमें शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस का उद्देश्य वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना और शांति और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान की क्षमता का उपयोग करना है।

शांति और सद्भाव के साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, जिसे आधिकारिक तौर पर हम विश्व शांति दिवस के रूप में भी जानते हैं, यह हर वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों के बीच मतभेदों को भुलाकर विविधता, सहिष्णुता, एकता और एकजुटता को बढ़ावा देना है। कहने का तात्पर्य है कि सभी मिलजुल कर रहे, आपसी सद्भावना हो, भाईचारे का भाव हो। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 दिसंबर 2017 को एक संकल्प पारित करके इस विशेष दिवस की स्थापना की थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय शांतिपूर्वक सहजीवन दिवस जो 16 मई 2018 को मनाया गया था। यह दिन हमें याद दिलाता है कि एक स्थायी शांतिपूर्ण दुनिया बनाने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन, समुदायों और समाजों में क्षमा, करुणा और आपसी समझ को अपनाना चाहिए। और यह तभी संभव हो पाएगा जब हम आपस में मिल के रहेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को भी तवज्जो देंगे, उनका आदर करेंगे। जब तक आपस में मेलजोल नहीं रहेगा, भाईचारा नहीं रहेगा, तब तक हम आगे बढ़ने की भी नहीं सोच सकते।

हम परिवार से ही उदाहरण ले सकते हैं। अगर परिवार में सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर रहते हैं तो समाज में उस परिवार का मान सम्मान हमेशा बढ़ता ही है। लेकिन एक दूसरा परिवार ऐसा भी है जहाँ पर हमेशा लड़ाई झगड़े रहते हैं, मनमुटाव रहता है। जब वह परिवार अपने आप को ही एकजुट नहीं कर पाता है तो देश की एकता में क्या ही साथ देगा।

इसी गीत के साथ सुबह सवेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 8:15 पर अंग्रेजी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और AI के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है।

0: लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
2: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रूपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महाआवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
3: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि 1,00,000 बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30,00,000 मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
1: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए।

0: लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोक सत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ਤਨ ਯੂਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

श्रोताओ, आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। आज हमारे गायक कलाकार हैं जगबीर सिंह बहलंबिया और उनके साथी।

अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम लोक संगीत। हमारे कलाकार थे जगबीर सिंह बहलम्बिया और साथी। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म ब्रह्मचारी केस गीत के साथ। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी सुमन कल्याणपुर की। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

अगला गीत आपको सुनवा रही हैं फिल्म धर्मात्मा से, आवाजें हैं लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की, बोल लिखे हैं इंदीवर ने, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

किशोर कुमार की आवाज़ में आइए सुनते हैं मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओ, आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं गीत। आवाजें हैं आशा भोसले मोहम्मद रफी की, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने और फिल्म का नाम है बैराग।

हसीना बड़ी खूबसूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो, हे हम सारे हैं भारतवासी सब।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में जिगरी दोस्त फिल्म का ये गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। श्रोताओ, आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है शागिर्द, आवाज़ लता मंगेशकर की। गीत को लिखा है मजरू ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में शागिर्द फिल्म से ये गीत। गीतकार थे मजरू संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। श्रोताओ अब आपको सुनवा रहे हैं शहनाई फिल्म से ये गीत। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत दिया है रवि ने।
1: न झटको जुल्फ से पा...

श्रोताओ, अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में शहनाई फिल्म से ये गीत। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार थे रवि। इसी गीत के साथ सबरस कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 10:05 पर अंग्रेजी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया है। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल है। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की साझेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया। एक रिपोर्ट।
1: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर, उपकर और अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में जरा भी सच्चाई नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसके बाद समाचार एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट वापस ले ली और सोशल मीडिया से इससे संबंधित पोस्ट हटा दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रमुख समाचार एजेंसी ने स्वीकार किया कि रिपोर्ट गलत थी और त्रुटि के लिए खेद भी व्यक्त किया। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर वहां की जनता को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास में सिक्किम का योगदान अमूल्य है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का उत्सव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य अपना 50वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ तथा सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। और खेलों में बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशिया के नो रिजुद्दीन और गो शी फेई की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi arrived in the Netherlands late last night on the second leg of his five-nation tour, aimed at deepening India's strategic and economic ties with European nations. Mr. Modi was received by the Dutch Foreign Minister Tom Berendsen upon his arrival at Amsterdam Airport. Mr. Modi reached the Netherlands after a brief stopover in the United Arab Emirates, where he held talks with UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. At the hotel in The Hague, the Prime Minister was accorded a grand welcome with cultural and musical performances by the Indian diaspora. Dutch troops also greeted him ceremonially. Prime Minister Narendra Modi has reiterated government's commitment to improving ease of doing business and ease of living for the countrymen. In a social media post, Mr. Modi rejected a media report on imposing cess, tax or surcharge on foreign travel. He said the report is completely false and there is not an iota of truth in it. The Prime Minister said there is no question of imposing any such restrictions on foreign travel. Later, the news organization officially withdrew the report and deleted the post regarding it

0: मीडियम वेव 262.7 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30:20 हुए हैं। हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम पसंद अपनी अपनी।
1: कार्यक्रम पसंद अपनी अपनी सुनने वाले सारे बण भाइया ने दलजीत भाई की राम राम। भाइयों आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हरियाणवी फिल्म का गाना थे फिल्म रवगी बहु रानी और गायक रहेंगे भूपेंद्र। और इस गाने ने सुन खातर अपनी फरमाइश भेजी है पांडु पिंडारा जिला जींद ते बादल सिंह गिल, कमलेश रानी, टीनू प्रीति, डॉक्टर वाणिका और डॉक्टर अंकित गिल। ये हमारे श्रोता हैं गांव बिरौली जिला जींद ते सुरेंद्र सांगवान, सचिन और अंकित सांगवान। फ्रेंड्स कॉलोनी कैथल ते हमारे श्रोता हैं इसे गाने ने पसंद करे हैं रामफल मान, रामधारी मान, पाला राम, इंद्र सिंह, अनिल, परवीन, दलजीत मान और महमूद परोड़ गुहाणत हैं, पंडित प्रभुदयाल, बिजेंद्र, दिनेश आजाद, लक्ष्य, रोबिन मुदगिल। आदर्श नगर मलोट पंजाब के हमारे श्रोता हैं राज शर्मा, मीना, योगेश, सौरव और उनके परिवार के सदस्य। तो सब सुने भाई बहुरानी फिल्म का योगीत।

भूपेंद्र गगाया उड़े बहुरानी फिल्म का योगी सुना। कार्यक्रम की अगली रागनी सुनेंगे राजेंद्र खरके और उनके साथियों की गाई ओड और पसंद भेजी है आप सबने। आप हैं गांव बलियाली जिला भिवानी तो दर्शन लाल बंसल, सुदेश रानी, प्रवीण कुमार, कमल कुमार, गर्विश तमन्ना और ममता रानी बंसल। गांव फ्रांसी राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह, प्रमोद कुमार डूडी। आसी शहर तराजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। पटेल नगर मलोट पंजाब के हमारे श्रोता हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया। गिड़काली मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता हैं कृष्ण पाल डबास, अनुज राजेंद्र, अजय नीटू और विनोद डबास। यह चिट्ठी आई है महेंद्रगढ़ से और पसंद भेजनी है ममता गांधी, विकास गांधी, वंश दिया, नोनू सगुन और विकी गांधी। तो सब सुना अपनी पसंद पर भाई राजेंद्र खरकिया और उनके साथियों के गायोड़ या रागनी।

लीलो चमन के कस्यप में हैं राजेंद्र खरकिया की गाई ओड़िया रागनी सुन ली। अगली रागनी सुनेंगे बावराम दई और उनके साथियों की गाई ओड़ और के सारा होगा आंजना पवन का। और इस रागनी ने सुन खतरा अपनी फरमाइश भेजी है गादी जनपद बागपत उत्तर प्रदेश के काशीराम दलाल बलदेव सिंगारिया रामफल दयानंद धर्मवीर नितिन अर्पित हरिओम ओमपाल सनी निमेश अनुज और रेड कुंबल छापरौली उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता हैं जसवंत सिंह खोखर राजकुमार अनिल सुनील प्रवीण सुमित विनित और पूरा खोखर परिवार शीशा हिसार से हमारे श्रोता हैं अनूप दिनेश बलवान बाली चमन रणधीर सुरेंद्र दीपांशु गांव देवगढ़ से श्री राम चल वीर सिंह चल मास्टर ओम बलवान धर्मचंद दया किशन कालाराम और मास्टर रणधीर लोको कॉलोनी लिवार होते हैं बिलू सिंह चंडालिया लक्ष्मी देवी सुरेंद्र कुमार बरखा योगेंद्र और नरेंद्र कुमार। तो सब सुन अपनी पसंद पर भाई बाबू राम दैया और उनके साथियों की गाई उड़ यारागनी।

0: से मारे मलाल करोड़ी तू सर मां के या गर्दन मोड़ी
1: तू सर मां के गर्दन मोड़ी
0: बेशक आयु थोड़ी थी बेशक आयु

बाबूराम दई और उनके साथियों की गाई उड़ अंजना पवन के किस्से में तैरागनी सुनी। कार्यक्रम का आखिर में सुनोगे एक दो गाना वेद प्रकाश कौशिक अलीपुरी और कुमारी परवीन का गाया उड़े और पसंद भेजनी है आप सब। गांव चिड़िया दुधवा चरखी दादरी ते सोनू मंजीत तन्नी से संगोलिया उनका पूरा परिवार खेड़ी दौलतपुर ते प्रीत सिंह बिंटू और संजय कुमार खरकड़ी हिसार ते बागाराम पवन कुमार पंकज रमेश शमशेर दिनेश सुभाष और अमरजीत जिंजर ते हमारे श्रोता हैं मास्टर सतबीर शर्मा कौशल्या बाला और उनका पूरा परिवार। तो सब सुने भाई वेद प्रकाश कौशिक और कुमारी प्रवीण का गाया उड़ यू दो गाना।

0: दो गाने के साथ है कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। थोड़ी देर में खेत खलिहान में फिर मिलेंगे सारे बण भाइयों ने। राम राम।
1: आपने सुना पसंद अपने अपने कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन का 1 बजने वाला है, कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके बाद 1:05 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। फिलहाल हिंदी समाचारों का वक्त है, तो चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
1: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।
0: सेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री की राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगे। वहां हजारों भारतीय समुदाय के उपस्थित होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की नीदरलैंड्स यात्रा का एक मुख्य आकर्षण होगा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड्स संबंधों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड्स पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। ये बटालियन साजो सामान और तैनाती के लिए मानक संघीय प्रोटोकॉल का पालन करेगी, उग्रवाद रोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाके डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना कर्मी मकानों के निर्माण में इस्तेमाल हुई सामग्री और उनमें उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित 33 प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। राजस्थान में लगभग 15 लाख परिवारों ने स्वगणना सुविधा के माध्यम से अपनी जानकारी जमा करने का विकल्प चुना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिनभर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा है कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है, वे 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। आकाशवाणी की स्थापना के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र द्वारा आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ की सुखना झील पर आयोजित इस वॉकेथॉन को प्रसार भारती के चंडीगढ़ में जोनल प्रमुख सुमित गोयल ने झंडी दिखाई। 2.5 व 5 किलोमीटर के इस वॉकेथॉन में आकाशवाणी प्रमुख विकास भट्ट, समाचार प्रमुख अश्विनी कुमार शर्मा व कार्यक्रम प्रमुख पूनम अमृत सिंह सहित आकाशवाणी परिवार के सेवारत व सेवामुक्त कर्मचारियों व अधिकारियों और उनके पारिवारिक सदस्यों ने उत्साह के साथ भाग लिया। आकाशवाणी की स्थापना 1936 में हुई थी। स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने पर मई माह में देश भर के केंद्रों में वॉकेथॉन व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जन जन की वाणी आकाशवाणी की बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की समृद्ध विरासत का जश्न मनाना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वर्ष 2027 से दिल्ली में नए सीएनजी और डीजल ऑटो रिक्शा का पंजीकरण बंद करने का निर्णय लिया है। कल आयोग की 28वीं पूर्ण बैठक में तय किया गया कि इसके स्थान पर केवल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को ही मान्यता

0: संरक्षण के साथ लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं चिरायु योजना का लाभ सहज, त्वरित और बिना किसी बाधा के उपलब्ध करवाने के लिए रोहतक जिला प्रशासन ने आयुष्मान सारथी पोर्टल के माध्यम से विशेष नागरिक सुविधा पहल की शुरुआत की है। इस पहल के अंतर्गत आयुष्मान योजना के पैनल में शामिल अस्पताल केवल उपचार केंद्र नहीं रहेंगे, बल्कि पात्र नागरिकों के लिए स्वास्थ्य मार्गदर्शक, सुविधा सहयोगी और योजना के सक्रिय क्रियान्वयन भागीदार के रूप में कार्य करेंगे। रोहतक के उपायुक्त सचिन गुप्ता ने आयुष्मान योजना के अंतर्गत पैनल में शामिल निजी अस्पताल संचालकों एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि सभी अस्पताल अपने परिसर में आयुष्मान योजना की पात्रता, उपलब्ध चिकित्सा पैकेज, हेल्पलाइन नंबर, मरीज अधिकार और अन्य आवश्यक जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित करें, ताकि नागरिकों को अस्पताल पहुंचते ही योजना की पूरी जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि आयुष्मान सारथी पोर्टल अस्पतालों को नागरिक केंद्रित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का सक्रिय साझेदार बनाएगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गाने।

यथालता मंगेशकर का गाया कालीचरण फिल्म का गीत इंद्रजीत सिंह तुलसी ने इसे लिखा था और संगीतबद्ध किया था रविंद्र जैन ने। अगला गीत आपको सुनवाते हैं यसुदास का गाया हुआ सुनैना फिल्म से। गीतकार संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

ये था यशुदास का गाया सुनैना फिल्म का गीत। गीतकार संगीतकार थे रविंद्र जैन। अगला गीत लावा फिल्म से आशा भोसले और मनमोहन सिंह की आवाज़ें आप सुनेंगे। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है आर डी बर्मन का।

आपने लावा फिल्म का गीत सुना। आशा भोसले और मनमोहन सिंह की आवाजें थी। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था आर डी बर्मन का। अगला गीत आपको सुनवाते हैं कर्म फिल्म से, आशा भोसले और किशोर कुमार ने गाया है। इंद्रजीत सिंह तुलसी का गीत है, संगीत है आर डी बर्मन का।

ये आपने सुना कर्म फिल्म का गीत, आशा भोसले और किशोर कुमार ने गाया। इंद्रजीत सिंह तुलसी का गीत था, संगीत था आरडी बर्मन का। अगला गीत आपको सुनवाते हैं कुदरत फिल्म से, लता मंगेशकर ने गाया है। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत है आरडी बर्मन का।

लता मंगेशकर का गाया कुदरत फिल्म का यह गीत आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था आरटी बर्मन का। फिल्मी गाने आप तक पहुंच रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अगला गीत आपको सुनवाते हैं दिल तुझको दिया। इस फिल्म से लता मंगेशकर की ही आवाज़ एक बार फिर से आप सुनेंगे। गीतकार संगीतकार हैं राजेश रोशन।

ये था लता मंगेशकर का गाया दिल तुझको दिया फिल्म का गीत। गीतकार संगीतकार थे राजेश रोशन। अगला गीत आइए सुनते हैं काला सोना फिल्म से। आशा भोसले और डैनी डेंगजोपा की आवाजें हैं। मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत आर डी बर्मन का।

0: काला सोना फिल्म का गीत आपने सुना। आशा भोसले और डेनी डेंगजोपा की आवाज़ें थीं। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार आर टी परमल। फिल्मी गाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अगला गीत झूठा कहीं का, इस फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में गाया हुआ, आइए सुनते हैं। आर टी बर्मन का संगीत है, गुलशन बाबरा का गीत है।
1: शीतल खन्ना ने चेक क्या पास कर दिया? तुम तो शाम से पैसे खर्च करते जा रहे हो।
2: वो पैसे थे
1: से कहने वाले थे
2: नहीं।
1: हाँ, मैं यहाँ छुप के खड़ी हो जाती हूँ, हाँ, और तुम यहाँ खड़े हो जाओ और तुम्हें जो कुछ भी बोलना है बोल दो। ओके
2: ओके। सुनो,
1: हाँ?
2: अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगे तो बेशक उसी तरह से तुम घर चली जाना।
1: Okay.
2: अनीता, मैंने आज तक हमेशा तुमसे झूठ बोला है, लेकिन आज दुनिया में सिर्फ मेरी माँ है, मुझे उसकी कसम। आज मैं तुमसे जो कुछ भी कहूंगा वो झूठ नहीं, सच है, बिल्कुल सच है। अनीता, जाने अनजाने में जिसे चाहा है, जिसे प्यार किया है, वो तुम हो अनीता।

ये था झूठा कहीं का फिल्म का गीत, आशा भोसले ने गाया, आरडी बर्मन का संगीत था, गीतकार थे गुलशन बावरा। हालांकि गीत से पहले आपने एक लंबा साउंड ट्रैक भी सुना। कार्यक्रम का आखिरी गाना अब आपको सुनवाते हैं जवानी दीवानी फिल्म से, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है आरडी बर्मन का।

फिल्म जवानी दीवानी के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रोहतक केंद्रों से खत्म होता है। 2 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर के बाद आप सुनेंगे समाचार, पहले अंग्रेजी में इसके बाद हिंदी में। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्रों से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2,00,000 से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
0: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा।
3: भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम,
0: सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थी, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, AI, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
6: If you heard me earlier,
5: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
0: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
7: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी।

0: ये समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं, जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए AI के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब

0: चेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जाँच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप खेत खलिहान कार्यक्रम सुनेंगे।

0: नई वॉशिंग मशीन।
1: अच्छा है।
2: यस। क्या हुआ?
0: अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है।
1: अच्छी धुलाई होगी,
0: है ना?
1: बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए।
0: बच गए धुलाई से।
1: ये नई धुलाई। अब यह कहता है कि
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम सुननी है सारे बण भाइयों ने दलजीत भाई की। राम राम। किसान भाइयों, मौसम का जो जिक्र करा तो ये अगले आने वाले कई दिन तक तापमान में बढ़ोतरी है। जो पूर्व अनुमान विश्वविद्यालय की तरफ आ रहा है उसमें यही बताया गया है कि इब कोई मौसम में बदलाव भी नहीं है, कोई इब कुछ इस तरह की नहीं कि भाई तापमान में गिरावट आएगी। आज में, कल में, अगले दिन में जो देखा जाता है बिल्कुल साफ मौसम रहने की संभावना और तापमान बढ़ सके है। इसको ध्यान में रखते हुए अपने हमने काम करने हैं। जो भाई इब प्योद बोन की सोच रहे हैं वो देख लें अपने खेत का हिसाब किसा की है, खेत की तासीर किसी है, कुछ खेती से आ करें भाई उनमें ज़मीन ठीक ठाक है, पानी भी ठीक है, बायस हमारी भी ठीक ठाक हो जाएगी, पेड़ पौधे हैं उनका आसपास, जगह बढ़िया है हमारे दुरा प्योद बोन की, तो वो कोशिश करें। बाकी जब किसी ने दिखा है कि भाई इब ज़्यादा दिक्कत है तो एक दिन का दो दिन का जो थंबा है वो भी कर लेना चाहिए। और जिन भाइयों ने भाई अगेती बोए रखी हैं उनका तो देखो ये विषय है, उसकी संभाल करनी पड़ेगी। और आने वाले टाइम में जो भाई बोन वाले हैं या फिर जिनका हिसाब नहीं लग गया है कि भाई उनने तो बीज भी ले रखा है, सारे काम भी कर रखे हैं, तो फिर वो अपना मौसम का हिसाब देख कर काम करें। बाकी कल भी बात कर रहे थे हरी खाद का अपना की महत्व है उसके बारे में। हरी खाद जिन भाइयों ने बनानी है, ढेंचा का बीज ले आवें, 20-25 किलो बीज की जरूरत पड़ेगी। बाकी सुमार के खेत ने एक सा करके साफ सुथरा और उसमें बुआरा कर दिया, नमी होनी चाहिए, वो जाम जाए, एक दो पानी की जरूरत पड़ेगी तो वो भी देना पड़ेगा। जब 4-5 फुट का ढेंचा हो लेगा उस टाइम पे वो काट देना है और फिर पानी भी देना पड़ेगा ताकि वो ज़मीन में गड़ सके है। जब ना उसने गड़ाएंगे तो वो नुकसान करेगा क्योंकि जो उसके डंठल हैं वो ऊपर आ जाएंगे। अगली फसल हम जब बोएंगे तो वो उसने बीज ने दाब लेंगे या प्योद लगाओगे तो प्योद ने दाब लेंगे। तो ये कुछ है अपने जो काम दाम की बात थी जो खेत में चला रहे हैं वो हैं। और आज की अपनी चर्चा रखेंगे कृषि यंत्रों की देखभाल। किसान भाइयों, एक तो मौका देखभाल का ऐसा हुआ है कि उन यंत्रों की जो ज़रूरत थी वो इब नहीं रही, अगले सीजन पर जाकर जरूरत पड़ेगी, वो देखभाल एक अलग तरीके की है। एक देखभाल इसी हो है जो निरंतर चलती रहा करे, उसकी देख उन यंत्रों की देखभाल तो पूरे टाइम जरूरी है। जो मान ले ट्रैक्टर है, किसान का पहला ये यंत्र ट्रैक्टर मान के चलो, जो बड़ी मशीन है जो सारी मशीन ने चला है, तो उसकी संभाल हर टाइम जरूरी है। जब तड़के के टाइम पर सुबह जब हम खेत की तरफ ट्रैक्टर लेकर जावा तो उस टाइम पर 1 मिनट ला लें, 2 मिनट ला लें, कोई घनी बड़ी बात नहीं है, उसका पानी चेक कर लें, रेडिएटर में पानी है कि नहीं है, तेल चेक कर लें, उसका नीचे जो तेल मोगले हम जिसने बोला है मोबिल ऑयल है वो चेक कर ले, जो उसका गेज है उस पर निशान लगे उड़ाया करें, उस निशान पर न्यू देख ले कि ये जो दो निशान हैं इनके बीच में होना चाहिए, उन पर नीचे नहीं जाना चाहिए। जब ज़्यादा नीचे जा रहा है तो मिस्त्री के पास ले कर जाऊँ, और जब थोड़ा बहुत नीचे जा रहा है तो साफ सुथरा तेल ले आकर उसमें डाल लें, वो तेल पूरा होना चाहिए। कुछ भाई ने सोचे हैं कि गणेशी की जरूरत है, चल रहेगा यू तेल है, चकनाट इसमें बतेरा है ना, देखो टाइम पर सर्विस भी करवानी जरूरी है। हम की करा हाँ, जब हमारी चीज़ ख़राब हो ले है ना, हम उस टाइम पर उसका नज़दीक लगा हाँ, टाइम रहते अगर सर्विस करवा ली जा तो वो फायदेमंद रहे है। बहुत सारी सी चीज़ हैं जब तक ख़राब नहीं होंगे ना, आवाज़ भी आए जाएगी, चालें जाएंगी, उसने हम चलाए रहेंगे ना, ऐसा नहीं करना। बहुत महंगा एक ये सौदा साबित हो गया है, अपना सर्विस टाइम पर करवाते रहे, तेल ने चेक कर दे रहे, जितना को वो चल लगा उसके हिसाब से जो उसके अंदर के पुर्जे हैं वो उस तेल ने काला कर देंगे। तेल जब घना काला हो जाएगा और उसमें आम ट्रैक्टर ने चलाओगे तो ट्रैक्टर पर जोर पड़ेगा, जो आंगा उसका काम करते वक्त लगना चाहिए वो उसका खुद के चलन में लाग लेगा इतना जोर, तो उसकी देख रेख रखें। पानी की बात आई थी तो हम महंगी गाड़ी रखा हाँ, उनमें बैठ के चला हाँ, उसमें तो भाई एक आया करे केमिकल है कूलेंट बोल रहे हैं जिसने, जो ठंडा रखा करे गाड़ी ने, उसमें तो डलवा लिया है लेकिन ट्रैक्टर हम ना डलवा दे, ट्रैक्टर हम तो न्यू किते का चाहे खाल का पानी पा गया चाहे ट्यूबल का पा गया चाहे नलका का पा गया भरया डिब्बा उसका मैं ना उसमें क्या है कि उसके भी पुर्जे तो वही हैं जो हमारी कार के हैं जो गाड़ी के हैं ट्रैक्टर के पुर्जे वो यही सी बात नहीं है। उसकी बनावट एक दूसरे से आपता है इसकी बनावट दूसरे से आपता है यो आंगा लाण के हिसाब से बना रखा है वो थोड़ा सा शौकिया ज़्यादा चक्रम बना रखे हैं कि वो अपने हिसाब से गाड़ी ने खींच सके वो इंजन। इसमें भी जब हम एक बार तो 5-7 लाख का कोई ट्रैक्टर ले रहे हाँ तो इतने की मारी वो गाड़ी है जितनी देखभाल साफ सुथरी नुआई दुआई उसने रखा हाँ तो ट्रैक्टर ने क्यों नहीं रख सकते। देखो एक ठाडा लोहा बना रखा ऐसी बात नहीं इतना जल्दी खराब नहीं होता ये थोड़ा सा बुंडे हिसाब से भी हम चलाएं जहाँ हाँ लेकिन इससे माल रखना हमारा फर्ज बना है। इसके भी रेडिएटर में जो कूलेंट हम डाला हाँ कुछ थोड़ा सा जो इस तरह की चीज़ें साफ सुथरा पानी आरओ का पा जा भाई आरओ का नहीं पाओ तो बाहर तो भी बने बनाए पानी आओ हैं बोतल सी वो भी गाल सका हाँ नहीं तो कत्ती साफ सुथरा नित्रया उड़ पानी मटकेगा जिसका रेत माटी नीचे बैठ रहा हो वो पानी उसमें डालना चाहिए और कुछ दिनों के बाद उसकी सफाई भी हमने करवा देनी चाहिए। तो और किन किन बातों का ध्यान करना है जेकर वो भी करेंगे कृषि यंत्रा में तो रागनी भी बीच में सुन दे रहेंगे तो थोड़ा सा बातचीत में भी मज़ा आओगा। तो गायक कलाकार होंगे राजेंद्र सीमार और उनके साथी या रागनी सुनागे।

भैया ने रागनी सुन ली। गायक कलाकार थे राजेंद्र सीमार और उनके साथी। इनने की आवाज़ में एक रागनी और भी सुनांगे, लेकिन उस तो पहले जिक्र करेंगे कि वह जो कृषि यंत्र की देखभाल किस तरीके तक करनी है या बात जो चल रही थी। कृषि यंत्र में ट्रैक्टर की बात आई थी तो उसकी सर्विस करवाना, उसकी लाइट ठीक ठाक है, कोई बटन तो खराब नहीं हो रहा, उसके टायर हैं किसे हैं, आवाज़ ठीक ठाक है उसमें, वो स्टार्ट ठीक हुआ है, उसकी बैटरी है वो भी ठीक है नहीं, उसमें बैटरी में भी पानी की ज़रूरत पड़ा करे, उसके टर्मिनल में थोड़ी गंदगी सी आ जाया करे जी, तो डोरी लग गई, वो सारी साफ सुथरी है कि नहीं वो देखनी है। फिर रह गए उस तक चालन वाले दूसरे यंत्र, और उनकी भी बात करेंगे, लेकिन एक और विशेष बात कर लें कि जब कोई काम नहीं होता तो हम ट्रैक्टर ने खड़ा कर दिया हाँ, लेकिन किसान भाइयों एक बात जरूर कहेंगे कि महीने 20 दिन में एक बार उसने स्टार्ट करके जरूर देख ले, क्योंकि कुछ से पुरजे इसे आ करें कि जो सूखे रह के वो फिर बाद में चलाओ तो घर्षण उनमें बन जाया करे, थोड़ा सा चला के देख ले वो फिर चलन के हिसाब से बन जाएंगे, फिर कोई बात नहीं दो मिनट चला कर बंद कर दे चाहे उसने, उसके बाद फिर अपना जब जरूरत था जब उसने चला सका हाँ। बाकी और ट्रैली है, ट्रैली के भी पहिया में यो ही काम है, ग्रीस है जम जाए उन्हें थोड़ा सा हटते फिरते रहो तो उसमें बहुत फर्क रहा करे, टाइम पर ग्रीस उनमें दिवा जाए न्यू नहीं है जब तो भैया कड़ कड़ बोल के कोई गोली नहीं फूट ले इतने उसने नहीं दिखाओगे, यो भी काम नहीं करना है, क्योंकि बहुत महंगी ट्रैली मतलब कई लाख में जाकर तैयार हुआ है, और हम हिसाब कौन लगाते जे इस तरह का ध्यान करके या जो टूट फूट है इसके पैसे भी बचा लें, मिस्त्री कती जो पीछे देने हैं वो भी बचा लें तो वो हमारा बचत रह जाएगी। फिर रही उसके चारों तरफ बाढ़ की बात है, भाई कितने चमासा बरसा है चलो बारिश तो होगी, इतनी तो घनी बड़ी बड़ी जगह भाइयाँ करनी है, कुछ भाई तो बना रहे हैं जो ट्रेली ट्रैक्टर सारा सौदा भीतर छवा में खड़ा हो गया है, लेकिन कुछ भाइयों के तो बाहर खड़े हुए हैं, तो उसका इतना कर लें, अगले पहिए थोड़ा सा ऊंचाई पर कर दें, पिछला डाला खोल दें, पानी जितना भी उसमें पड़े तो वो लिकट जा, और जैसे ही बारिश हुआ है तो एक बार उसने चेक कर लें उसके फर्श पर थोड़ा बहुत पानी खड़ा हो जाया करे, वो खड़ा तो नहीं है, या तो उसमें हल्का फुल्का कोई सुराख कर सके हैं वो नीचे पानी लिकट जा, हल्का सा ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बड़ा सुराख करने में तो फिर हमारी जो फसल है वो डालेंगे वो निकल जाएगी, उसके पानी इस तरीके से काट दें या अगले पहिए ऊँचाई पर कर दें पीछे पानी लिकट जा। फिर बात आ है विशेष एक जो हमारा यंत्र है जिसकी संभाल बहुत जरूरी है, देखो एरो कल्टीवेटर में ज़्यादा सा नहीं है, इसमें कुछ बैरंगा काम है कुछ भूसा काम है, पहिए हैं इसके थोड़ा बहुत माटी लाग रही है उसने तार दें तो अच्छी बात है, कल्टीवेटर है एक ठोस लोहा है, लेकिन रोटावेटर और सुपर सीडर जो इसे मारे जो यंत्र है ना कुछ जो मशीन है उनकी देखभाल हमने बहुत बढ़िया तरीके से रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो तेल मचालन वाले हैं, उनकी गरारी चाल रहे हैं, उनकी सापट का घुमण है, जब उनके घुम है जो उसका भीतर हिसाब बना रखा है तो उसकी खुरपी देख ले कोई ढीली तो नहीं हो रही है, कोई माटी तो उसमें नहीं लाग रही है, जो पानी उसका लाग जा है वो जंग तो नहीं बना रहा है, जो तेल डला है ऊपर एक वो डिब्बा सा हो है जिसमें वो सारी फिर किसी जो तो उसकी गरारी गुम है उनमें तेल है कि नहीं है, वो सारी चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है, और वो खड़ा कर दिया और खड़ा रहा, अगले सीजन में जैसे ज़रूरत पड़ी फिर हम उसने चलावा हाँ, उसने चलाओगे तो फिर जब वो सूखा होगा तो चालक का तो बड़ा समस्या में आ जाएगा, उसने न्यू चेक करके अच्छा डाल घुमा के उसके अंदर तेल डाल के वो साफ सुथरा करके हम धर देंगे तो फिर हो सके है वो कति न्यू करने चलता पा जाए दिक्कत उसमें नहीं आओगी, और छोटी मोटी को बात आओगी कि तो वो दिखाई जा सके है, घनी बड़ी कोई दिक्कत उसमें नहीं आओगी। फिर उसके कोई कितने बैरिंग है, बैरिंग कमज़ोर पड़ रहा है, पले हो रही है, उसने थोड़ा सा हला टला के देख ले, उसकी जो वो खुरपी हैं जो वो घिसजियाँ हैं घिसे पास तक किसान भाइयों ईसा है वो काम करेंगे वो घूम में जाएंगे, इतना घना काम सा वो नहीं करेंगे, खुरपी उसकी इस हिसाब तो होनी चाहिए कि जैसे वो चल रहा है तो वो सही तरीके से अपना काम कर सके। और दूसरे जो अपना जो सुहागा पाटा है ये लकड़ी का है हम बनवा लिया हाँ, और इसने दशा दशा जो दर दिया हाँ तो कुछ भाइयों का देखा उसने दिमक खा दिया है, और एक बार दिमक खा गई और दोबारा वो खेत में लेके जाएंगे तो वो देखेंगे आधा हलवा हो जाएगा, वो ईसा ही काम करेगा, पूरा भारी बनवाया था अच्छे पीछे लाए थे कितने थे लकड़ लो वो खरीद के लाए थे बनाने में भी पीछे लग गए थे, अरे एक बजे दीमक आ गई तो वो बिना काम से का हो जाएगा, उसने भी संभाल के कितने दो ईंटा के ऊपर उसने हम धर से कहा, इस तरह हम ये संभाल करके कुछ इसमें 10 रुपये की बचत रख के अपने यंत्र ठीक चला के तो इसमें
मुनाफा रख सका हाँ। बाकी हरों की तो बात इसी है, इसके तोए हैं उनकी जो माटी लागे है वो तार दें, कितना टाइम लगेगा। अरे हमारे पर अपना काम नहीं बन पाया तो किसी बालक का जमा ला दें, छोटे बालक का ला दें, कोई सा बालक है जो थोड़ा सा काम खड़ कर बेटा इसकी माटी तार दे, टाइम हमने लागा है कोई खुरपी तो दराती तें कोई इस तरह का पत्ती पाती लेकर उसने साफ सुथरा कर दें, और फिर जब हम उसने रखेंगे अगले टाइम पर जब चलाओगे तो वो ठीक चलेगा। कल्टिवेटर का कोई स्प्रिंग है कोई ढीला हो रहा है, कोई बनियो बना है कोई खेत में कितने कोई जड़ आएगी कोई मूड़ आ गया कोई भारी सी चीज आएगी तो उसकी खुरपी मुड़ भी जाया करे नीचे थे, और टेढ़ी भी हो जाए तो उसके कितने टाका लगवाना है वेल्ड करवाना है कोई नट टूट रहा है वो सारा करवा कर जब रखें। ये बात थ्रेसर किया हो तो पहले साल काम करा तो अगले साल फिर उसकी जरूरत पड़े है सीजन भाई, और जानना है वो है इसका मैंने आमजे इसने न्यू का नहीं छोड़ दें और चमासा जा गया है तो उसमें सिलन बन के और वो जर गया है, जर के फिर अगले सीजन में चलावा है तो वो ख़राब हो जाया करे। तो कुछ ऐसे यंत्र हैं जो हमारे जिनकी संभाल रखनी बहुत ज़रूरी है, और विशेषकर बात जो शुरुआत में चली थी ना ट्रैक्टर की संभाल करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे तो सारी चीज़ चल रहे हैं। यो एक ऐसा यंत्र है हमारा कि यू ठीक रहेगा तो बाकी सारे जो यंत्र हैं वो भी फिर ठीक कर चलेंगे। चलो और टाइम रहेगा तो बात और भी करेंगे, लेकिन जब चला थे रागनी का तो गायक कलाकार एक बार फिर राजेंद्र सीमार और उनके साथी।

राजेंद्र सिंह और उनके साथियों की गायी भाई रागनी सुन ली और जिक्र करा था भाई जो कृषि यंत्र की देखभाल है उसके बारे में, विशेषकर तो ट्रैक्टर की संभाल करनी है, बाकी फिर जो और यंत्र हैं उनकी भी संभाल बहुत जरूरी है। जब उनकी संभाल हम नहीं करेंगे तो आगे जाकर फिर वो ठीक करवाने पड़ेंगे, ठीक करवाने पड़ेंगे तो उसमें खर्चा होगा और वो खर्चा होगा तो हमारी कितनी कितनी जो आमदनी है जो हम हिसाब लगा रहे हैं वो उससे मदद घटेगा, तो इन कुछ बातों का ध्यान करें। बाकी सांझ ने फिर कृषि जगत कार्यक्रम में बैठेंगे, ईब चाल हाँ सारे मन भाइयों ने राम राम।

आपने सुना खेत खलिहान कार्यक्रम। मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर DTH और न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब खत्म होते हैं। FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.67 मीटर DTH और न्यूज़ ऑन AIR पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। हमारी तीसरी सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवाओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम युवा संसार।

युवा संसार सुन रहे सभी साथियों को आपकी साथी रिशिता का नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में बात करते हैं सिक्किम दिवस के बारे में। सिक्किम दिवस हर वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। यह दिवस सिक्किम की संस्कृति, परंपराओं और भारत की एकता में उसके योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। सिक्किम अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बौद्ध मठों, हिमालय पर्वतों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इसके साथ ही यह दिन हमें देशभक्ति, एकता और सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखने की प्रेरणा भी देता है। आपको इस दिवस की खास बात बताएं कि 1975 के इस मर्जर की एक प्राथमिक शर्त यह थी कि केंद्र सरकार उन पर स्टैंडर्ड भारतीय टैक्स सिस्टम लागू नहीं करेगी, जिससे उनके मर्जर से पहले टैक्स स्ट्रक्चर को जारी रखने की अनुमति मिलेगी। इसलिए दोस्तों, सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जहां इनकम टैक्स लोगों को नहीं देना होता। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है शनिवार का दिन और शनिवार के दिन हम आपके लिए लाते हैं कार्यक्रम रोजगार समाचार विशेषांक। तो कार्यक्रम का पहला रोजगार समाचार है, NTPC में असिस्टेंट ऑफिसर की पद निकले हैं। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। आयु सीमा 18 से 30 साल तक है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 मई है। वेतन रहेगा 30,000 से लेकर 1,20,000 तक। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा होगी। आवेदन शुल्क युवर और OBC वर्ग के लोगों के लिए रहेगा 500 रुपये। कुल रिक्तियां हैं 20 और अप्लाई करने के लिए वेबसाइट है careers.ntpc.co.in। वेबसाइट हम दोबारा बता देते हैं, careers.ntpc.co.in। अगला रोजगार समाचार है, UBI में अप्रेंटिस के पद निकले हैं। इसके लिए आपको ग्रेजुएट पास होना ज़रूरी है। आयु सीमा 20 से 28 साल तक है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मई है। इसकी सैलरी लगभग 20,000 तक जाएगी। आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो UR और OBC वर्ग के लोगों के लिए 974 रुपये और वहीं SC और ST वर्ग के लोगों के लिए 236 रुपये। कुल पद हैं 1865। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट है unionbankofindia.bank.in। वेबसाइट हम दोबारा दोहरा देते हैं, unionbankofindia.bank.in। अगला रोजगार समाचार है, रेलवे भर्ती बोर्ड ने 11,127 असिस्टेंट लोको पायलट पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 14 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों की आयु 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए और आवश्यक शैक्षिक योग्यताओं को पूरा करना होगा। वेबसाइट है rrbapply.gov.in। वेबसाइट हम दोबारा बता देते हैं, rrbapply.gov.in। सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है। इस शुल्क में से 400 रुपये कंप्यूटर आधारित परीक्षा के पहले चरण में उपस्थित होने पर लागू बैंक शुल्क में कटौती के बाद वापस कर दिए जाएंगे। SC और ST और सभी श्रेणियों के संबंधित उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये है, जो CBT में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को वापस कर दिया जाएगा। अगला रोजगार समाचार है, भारतीय स्टेट बैंक ने कॉन्ट्रैक्चुअल आधार पर 821 कंकरेंट ऑडिटर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 11 जून 2026 को या उससे पहले इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये पद न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 3 वर्षों के लिए कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर उपलब्ध हैं, या जब तक कि अधिकारी 65 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाता, जो भी पहले हो। योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अप्रेंटिस की नियुक्ति के लिए चयन किया जाएगा। वेबसाइट है sbi.bank.in। वेबसाइट हम दोबारा दोहरा देते हैं, sbi.bank.in।
इन रिक्तियों को विभिन्न सर्कलों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इसमें नियमित और बैकलॉग दोनों पद शामिल होते हैं। साथियों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं गीत फिल्म कारवां से, जिसे आवाज़ दी है आशा भोंसले और आदि बर्मन ने, बोल लिखे हैं मजरून सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है आदि बर्मन ने।

么阿便？

साथियों, अभी हमने सुना ये गीत फिल्म कारवां से, जिसे आवाज़ दी थी आशा भोसले और आर डी बर्मन ने, वो लिखे थे मजरून सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। कार्यक्रम में आगे बात कर लेते हैं लिविंग टुगेदर इन पीस का। अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो हम आज मना रहे हैं, यह हर वर्ष साथियों 16 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों के बीच प्रेम, शांति, सहनशीलता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। यह दिन हमें सिखाता है कि विभिन्न धर्म, संस्कृतियाँ और विचार होने के बावजूद हम सभी को मिलजुल कर और सम्मान के साथ रहना चाहिए। इस अवसर पर दुनिया भर में शांति और सामाजिक एकता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। आज के समय में बढ़ते तनाव और संघर्षों के बीच यह दिवस संवाद और सहयोग का महत्व समझाता है। साथियों, लिविंग टुगेदर इन पीस का संदेश समाज में एकता और सकारात्मक सोच को मजबूत बनाता है। यह दिवस लोगों को हिंसा, भेदभाव और घृणा से दूर रहकर सद्भाव का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित भी करता है। कार्यक्रम में वापस आते हैं और बात करते हैं रोजगार समाचार विशेषांक में। तो अगला रोजगार समाचार है बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती 2026 की वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज डिवीजन में 104 रिक्तियां जारी हो गई हैं। इच्छुक उम्मीदवार 16 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है bankofbaroda.bank.in। वेबसाइट हम दोबारा बता देते हैं, bankofbaroda.bank.in। अगला रोजगार समाचार है वनजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने आधिकारिक तौर पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्टेनोग्राफर ग्रेड वन, ऊपरी डिवीजन क्लर्क, साथ ही स्टेनोग्राफर ग्रेड थ्री, हेड कांस्टेबल या वन गार्ड और ड्राइवर सहित 11 रिक्तियों के लिए भर्ती जारी की है। वनजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो भारत में संगठित वनजीव अपराध के मामलों से निपटने के लिए वनजीव प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 38(y) के तहत बनाए गए प्रोविजंस के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संगठित है। सभी इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं, जो 10 जून 2026 है। नौकरी का स्थान रहेगा नई दिल्ली, भोपाल, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। आयु सीमा रहेगी अधिकतम 56 वर्ष। पे स्केल की बात करें तो लेवल 2 से लेवल 10 तक रहेगा। एप्लीकेशन मोड पोस्ट के जरिए होगा। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो है moef.gov.in। वेबसाइट हम दोबारा दोहरा देते हैं, moef.gov.in। अगला रोजगार समाचार है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की देखरेख में राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड ने 85 डिप्यूटी मैनेजर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 8 जून 2026 तक निर्धारित की गई है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nhidcl.com के माध्यम से अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। वेबसाइट आपको दोबारा बता देते हैं, nhidcl.com। इन पदों के लिए चयन सिविल इंजीनियर में गेट स्कोर के सर्वश्रेष्ठ के आधार पर किया जाएगा, जो 2024 या 25 या 26 वर्ष में प्राप्त किया जाता है। अकॉर्डिंगली उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इन 3 वर्षों में से किसी भी ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राप्त सर्वश्रेष्ठ स्कोर प्रदान करें। आयु सीमा रहेगी अधिकतम 34 वर्ष। अगला रोजगार समाचार है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने फोरमैन और विभिन्न मैनेजेरियल पदों के नियुक्ति के लिए भर्ती जारी की है। संबंधित इंजीनियरिंग ट्रेडों में डिग्री या डिप्लोमा सहित कुछ शैक्षिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार असिस्टेंट पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 19 मई 2026 को या उससे पहले इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए चयन लिखित परीक्षा, व्यापार परीक्षा या साइकोमेट्रिक परीक्षा या समूह अभ्यास या पर्सनल इंटरव्यू में उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर आधारित होगा।
सामान्य EWS और OBC श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को ₹500 की आवश्यक आवेदन फीस का भुगतान करना होगा। SC या ST या PWBD और महिला श्रेणियों से संबंधित आवेदकों और इंटरनल UCIL उम्मीदवारों को किसी भी आवेदन शुल्क से भुगतान से छूट दी गई है। USIL वेबसाइट uraniumcorp.in पर UCIL भर्ती पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जाना चाहिए। वेबसाइट हम दोबारा बता देते हैं, uraniumcorp.in। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं उससे पहले गीत फिल्म आराधना से, जिसे आवाज़ दी है किशोर कुमार ने, संगीत दिया है SD बर्मन ने और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

साथियों, अभी हमने सुना ये गीत फिल्म आराधना से, जिसे आवाज़ दी थी किशोर कुमार ने, संगीत दिया था एसडी बर्मन ने और बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। कार्यक्रम में बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के बारे में, जो हर वर्ष 16 मई को विश्व भर में मनाया जाता है, ताकि विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सस्टेनेबल विकास में प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान दिया जा सके। यूनेस्को द्वारा स्थापित यह वर्ष 1960 में फिजिसिस्ट और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा लेज़र के पहले सफल ऑपरेशन की एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। हमारी दुनिया को रोशन करने वाली धूप से लेकर हमें जोड़ने वाली तकनीकों तक, प्रकाश हमारे जीवन में हर दिन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए साथियों, हम जहाँ भी जाएँ दयालुता, जागरूकता और सकारात्मकता फैलाएं, क्योंकि सबसे छोटी रोशनी भी सबसे अंधेरे रास्ते को उज्जवल कर सकती है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला रोजगार समाचार आपके लिए है। CSIR CCMB देश भर में टेक्नीशियन, तकनीकी अधिकारी और अन्य सहित 28 विभिन्न पदों के लिए भर्ती कर रहा है। आवेदन 26 मई 2026 को या उससे पहले ऑनलाइन मोड में स्वीकार किए जाएंगे। वेबसाइट है ccmb.res.in। वेबसाइट दोबारा बता देते हैं, ccmb.res.in। अगला रोजगार समाचार आपके लिए है। भारत सरकार के करेंसी नोट प्रेस नासिक ने 534 विभिन्न पदों पर प्रकाशित किए हैं। यह सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत 9 इकाइयों में से एक, भारत सरकार की एक मिनी रत्न श्रेणी 1 CPSE है। भर्ती अभियान के तहत वेलफेयर ऑफिसर, सुपरवाइजर, जूनियर टेक्नीशियन, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट और जूनियर कार्यालय असिस्टेंट पदों को भरा जाना है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 19 मई 2026 को या उससे पहले cnpnashik.spmcil.com पर इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट दोबारा बता देते हैं, cnpnashik.spmcil.com। अगला रोजगार समाचार आपके लिए है। इंडियन नेवी में भर्ती निकली है। BE, BTech, ME, MTech, MCA, MSc और सी कंप्यूटर साइंस के छात्र आवेदन कर सकते हैं। सैलरी 1 लाख तक हो सकती है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जून 2026 है। इसमें SSC अधिकारियों और अग्निवीरों के पद शामिल हैं। SSC IT के 15 पद हैं। वेबसाइट है joinindiannavy.gov.in। वेबसाइट आपको दोबारा बता देते हैं, joinindiannavy.gov.in। अगला रोजगार समाचार है, 18 मई से पहले आवेदन कर देना, क्योंकि IIT भिलाई में शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती निकली है। फ्रेशर्स और अनुभवी उम्मीदवार दोनों इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी ग्रेजुएट्स, MBBS, मास्टर्स और MTech उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे। कुल 47 रिक्तियां उपलब्ध हैं। वेबसाइट है iitbhilai.ac.in। वेबसाइट आपको दोबारा बता देते हैं, iitbhilai.ac.in। और याद रखिएगा, अंतिम तिथि है 18 मई। साथियों, कार्यक्रम में अभी हमने बात की थी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के बारे में, तो आपको उसके बारे में कुछ और जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। प्रकाश केवल रोशनी का स्रोत ही नहीं, बल्कि ज्ञान, नवाचार और प्रगति का प्रतीक भी है। यह दिवस हमें विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में प्रकाश आधारित आविष्कारों के महत्व को समझने की प्रेरणा भी देता है। आज के समय में लेज़र, फाइबर ऑप्टिक्स और सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी जैसी तकनीकों में मानव जीवन को अधिक आधुनिक और सुविधाजनक बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस विज्ञान के माध्यम से मानवता के उज्जवल भविष्य का संदेश हमें देता है।
यह दिवस शिक्षा, चिकित्सा, संचार और ऊर्जा के क्षेत्र में प्रकाश की उपयोगिता को उजागर करता है। प्रकाश आधारित तकनीकों ने इंटरनेट, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई दिशा भी दी है। सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस युवाओं को विज्ञान और नवाचार के प्रति प्रेरित करने का कार्य भी करता है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि प्रकाश अंधकार को दूर कर ज्ञान और सकारात्मकता फैलाने का माध्यम है। दोस्तों, प्रकाश मानव जीवन में आशा, ऊर्जा और नई सोच का प्रतीक माना जाता है, ये हम सबको पता है। आधुनिक वैज्ञानिक खोजों में प्रकाश आधारित तकनीकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। यह दिवस विज्ञान और समाज के बीच संबंध को मजबूत बनाने का संदेश हमें देता है। चिकित्सा क्षेत्र में लेज़र तकनीक ने उपचार को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाया है, और साथ ही हम सभी को ये बात पता है कि प्रकाश के बिना पृथ्वी पर जीवन और प्रकृति की कल्पना करना संभव ही नहीं है। यह दिवस हमें ऊर्जा के सही उपयोग और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस दुनिया भर में वैज्ञानिकों, छात्रों और शोधकर्ताओं को नवाचार के लिए प्रेरित करता है। और आज से ही नहीं बल्कि प्रकाश ने मानव सभ्यता के विकास में प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दीपक से लेकर लेज़र तक प्रकाश की तकनीकों ने दुनिया को नई दिशा दी है। यह दिवस वैज्ञानिक उपलब्धियों और मानव बुद्धिमत्ता का उत्सव भी माना जाता है। प्रकाश कला, फोटोग्राफी और सिनेमा जैसे रचनात्मक क्षेत्रों की आत्मा भी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस वैश्विक सहयोग और वैज्ञानिक जागरूकता को बढ़ावा देता है। यह दिवस विद्यार्थियों को विज्ञान, अनुसंधान और नई खोजों के प्रति आकर्षित करता है। प्रकाश आधारित संचार तकनीकों ने पूरी दुनिया को आपस में जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है, और यह दिवस हमें अज्ञानता के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो साथियों, आज के कार्यक्रम में हमें ये पता चला है कि प्रकाश हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है, और प्रकाश से हम सकारात्मक सोच को पैदा कर सकते हैं, और दयालुता, जागरूकता से हम छोटी से छोटी रोशनी भी हमारे अंधेरे को जो है उसका रास्ते को हमारे उज्जवल कर सकती है। साथ ही हमको ये भी पता चला है कि साथ में रहने से, शांति से रहने से हमारा भाईचारा बढ़ता है, और हम नए नई जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और हमारे जो जीवन शैली में विकास है उसको हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो वक्त हो चला है साथियों कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। उम्मीद है आपसे मिलेंगे ऐसे ही किसी दिन। तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा संसार। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की

0: बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्र तक पूरी पहुंच थी। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल शिक्षा छोड़ने पर मजबूर विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। लीजिए अब सुनिए आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम। आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम एक फिल्म से। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:20 पर डॉक्टर मेहर चंद कम्बोज के साथ बातचीत का विषय रहेगा मक्का की चारे व दाने के लिए काश्त। ग्रामीण संसार कार्यक्रम में शाम 7 बजे हरियाणवी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद प्रसारित होगा। फिल्म संगीत का लुत्फ आप उठा सकेंगे शाम 7:30 पर। अभी आप सुन रहे थे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब प्रस्तुत है कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल प्रातः 7:35 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुबह सवेरे। बच्चे सुनेंगे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बालकुंज सुबह 8:30 पर। दूसरी सभा में दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा संसार शाम 5:30 पर। लोक संगीत कार्यक्रम सुनिएगा रात 9:30 पर। और शास्त्रीय संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम का समय रहेगा रात 10:00। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:20 पर डॉक्टर रामकरण के साथ बातचीत का विषय रहेगा रबी फसलों का भंडारण। ग्रामीण संसार कार्यक्रम आप सुनिएगा शाम 7:00। खेत खलियान कार्यक्रम में दोपहर 2:30 पर मधुमक्खी कॉलोनियों की देखभाल विषय पर जानकारी दी जाएगी। फिल्म संगीत का लुत्फ आप उठा सकेंगे। सुबह 9:00 कार्यक्रम एक कलाकार के अंतर्गत। दोपहर 1:10 पर कार्यक्रम आपके अनुरोध के अंतर्गत। और शाम 7:30 पर। अभी आप सुन रहे थे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब कुछ स्थानीय सूचनाएं। थाना पुरानी सब्जी मंडी जिला रोहतक द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार मानसी पुत्री सोमवती अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनकी उम्र है 18 साल और कद है 5'3". इनका हुलिया है रंग गोरा लंबूतरा चेहरा पतला फुर्तीला शरीर। इन्होंने सफ़ेद रंग की टी शर्ट व काली पजामी और पैरों में चप्पल पहनी है। इनसे संबंधित कोई भी जानकारी मिले थाना पुरानी सब्जी मंडी रोहतक में संपर्क करें। थाना लखन माजरा जिला रोहतक द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार करण दिनांक 16/4/2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 18 वर्ष है। कद है 5'7". रंग गेहुआ लंबूतरा चेहरा। इन्होंने सलेटी रंग की लोअर व मेहरून रंग की टी शर्ट और पैरों में बाटा की चप्पल पहनी है। इनसे संबंधित कोई भी जानकारी मिले पुलिस कंट्रोल रूम रोहतक में संपर्क करें। नंबर रहेगा 01262247200। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। शाम के 6:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र लीक से जुड़े मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं परीक्षा के अपने परिणामों से असंतुष्ट विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा का मौका देने का फैसला किया। पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने 12वीं कक्षा में 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर में भाजपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

0: के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी की वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी। सीबीआई ने कहा कि उन्होंने 14 मई को गिरफ्तार की गई मनीषा वाघमारे के माध्यम से नीट परीक्षा के संभावित उम्मीदवारों को जुटाया और पुणे स्थित अपने आवास पर इन विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाएं चलाई। इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 5 आरोपियों को पहले ही अदालत में पेश किया जा चुका है और विस्तृत पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत में लिया गया है। कल गिरफ्तार किए गए अन्य 2 आरोपियों को पुणे की अदालत में पेश किया गया और पारगमन रिमांड के बाद दिल्ली भेज दिया गया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने देशभर में 6 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। बोर्ड ने कहा है कि जो विद्यार्थी 12वीं की बोर्ड परीक्षा के अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है, वे 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी 19 से 22 मई के बीच अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन का अनुरोध कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल 1 आवेदन स्वीकार किया जाएगा। पाई गई समस्याओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन 26 से 29 मई के बीच जमा किए जा सकते हैं। पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आज केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा में 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सरकारी विद्यालयों के 57 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। चंडीगढ़ में पंजाब लोक भवन में आयोजित प्रतिभाशाली छात्र सम्मान समारोह के दौरान श्री कटारिया ने चंडीगढ़ के सरकारी विद्यालयों के प्रदर्शन में निरंतर सुधार की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की उपलब्धियों ने चंडीगढ़ को गौरवान्वित किया है तथा सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था में निरंतर बढ़ रही शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रदर्शित किया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 12वीं के परीक्षा परिणाम में सरकारी विद्यालयों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 87.25 रहा, जो राष्ट्रीय औसत 85.2% से 2.05% अधिक है। उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष पिछले वर्ष 29 विद्यार्थियों के मुकाबले 57 विद्यार्थियों ने 95% से अधिक अंक प्राप्त किए और 348 विद्यार्थियों ने 90% एवं उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 225 थी, जो शैक्षणिक परिणामों में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाती है। उन्होंने विद्यार्थियों को नवाचार, उभरती तकनीकों और आधुनिक शिक्षण अवसरों को अपनाने के लिए प्रेरित भी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज यमुनानगर में भाजपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सरस्वती उद्गम स्थल श्री आदिबद्री नारायण मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की तरक्की की कामना की। उन्होंने इस मौके पर हरियाणा के विकास कार्यों की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। हिसार में भी आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि देशभर में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
1: भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय ये प्रशिक्षण शिविर है, पूरे देश के अंदर है। हमें हमारे जो पार्टी के जो मंडल सत्र से लेकर के जितने भी पदाधिकारी है वो सारे बैठ करके और सरकार की नीतियों पे, सरकार के जो कार्य कर रहे हैं, पार्टी के अंदर कैसे अनुशासन चाहिए, क्या क्या हमारी योजनाएं है, उस पर चर्चा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसीलिए ये पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग है।
0: तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका, ईरान और इसराइल ईरान युद्ध के बाद में जो हालात उत्पन्न हुए हैं उसके कारण इस तरह के फैसले लेने पड़े हैं। श्री गंगवा ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा अपना काफिला कम करने का काम किया गया है। उन्होंने भी अपने काफिले से पायलट गाड़ी को हटाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम से कम ईंधन खर्च करने की जो अपील की है उसका सभी को एकजुट होकर समर्थन करना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट

0: newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र द्वारा आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ की सुखना झील पर आयोजित इस वॉकेथॉन को प्रसार भारती के चंडीगढ़ में क्लस्टर प्रमुख सुमित गोयल ने झंडी दिखाई। 2.5 व 5 किलोमीटर के इस वॉकेथॉन में आकाशवाणी प्रमुख विकास भट्ट, समाचार प्रमुख अश्विनी कुमार शर्मा व कार्यक्रम प्रमुख पूनम अमृत सिंह, पत्र सूचना दफ्तर के प्रमुख प्रीतम सिंह, दूरदर्शन समाचार प्रमुख आकांक्षा सहित आकाशवाणी परिवार और सहयोगी कार्यालयों के सेवारत व सेवामुक्त कर्मचारियों व अधिकारियों और उनके पारिवारिक सदस्यों ने उत्साह के साथ भाग लिया। देशभर में किए जा रहे इन आयोजनों का उद्देश्य जन जन की वाणी आकाशवाणी की बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की समृद्ध विरासत का जश्न मनाना है। हरियाणा पुलिस की नई आईटी पहल के तहत पहली बार प्रदेश में नवनियुक्त कांस्टेबल के जिला व यूनिट आवंटन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से संपन्न की गई। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कंप्यूटर पर एक क्लिक के साथ इस प्रक्रिया को पूरा किया। इस पारदर्शी प्रणाली के तहत 5100 पुरुष एवं 1797 महिला कांस्टेबल से ऑनलाइन माध्यम से उनकी पसंद पूछी गई ताकि उन्हें उनकी मेरिट अथवा वरिष्ठता के अनुसार उनकी पसंद के जिले व यूनिट आवंटित किए जा सकें। आज शनिश्चरी अमावस्या पर कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर हरियाणा व देश के अन्य राज्यों से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र ब्रह्म सरोवर में स्नान किया और जरूरतमंदों को काले तिल, उड़द की दाल, काले कपड़े, छाता, जूते चप्पल का दान किया। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे और सरोवर के तट पर सरसों के तेल के दीपक जलाए गए, दान पुण्य किया। पंडित राकेश गोस्वामी ने बताया कि आज ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि जयंती और वट सावित्री व्रत का महासंयोग बना है जिससे इसका महत्व और बढ़ गया। पलवल स्थित जाट धर्मशाला में आज जाट समाज विकास समिति द्वारा चौपाई महामेले का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने महामेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की जबकि खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम एवं पूर्व विधायक दीपक मंगला विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। हरियाणा सरकार द्वारा स्वच्छता सम्मान और सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के अंतर्गत संचालित महावारी स्वच्छता मिशन को जींद जिले में प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। आंगनवाड़ी निरीक्षक दर्शना देवी ने बताया,
1: हमारे आंगनवाड़ियों में सभी में सैनिटरी पैड की स्कीम चालू की गई है जिससे कि औरतों को साफ सफाई के बारे में भी जागरूक किया जाता है ताकि वो स्वस्थ रहें और अच्छी रहें। और सभी बीपीएल परिवार में जितनी भी महिलाएं 10 से 45 वर्ष की होती हैं सभी को सैनिटरी पैड दिए जाते हैं जिससे उन्हें सैनिटरी पैड बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र लीक से जुड़े मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के अपने परिणामों से असंतुष्ट विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा का मौका देने का फैसला किया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: इसके चारे के लिए
1: जी,
0: दोनों अलग अलग किस्में होती हैं
1: जी।
0: चारे के लिए हमें ऐसी किस्में चाहिए जो किसान को, जिनका बीज सस्ता मिल जाए
1: जी,
0: बढ़वार तेज़ी से हो, उनकी जो हाइट है ऊंचाई है वो ज़्यादा हो
1: जी,
0: और किसान भाई को ज़्यादा चारा मिले
1: जी।
0: तो इसके लिए मुख्य तौर पर दो किस्में हैं, अफ्रीकन टाल और दूसरी है J1006।
1: अफ्रीकन टाल,
0: हाँ जी, अफ्रीकन टाल
1: की लंबी किस्म,
0: हाँ जी, काफ़ी लंबी होती है, पुरानी किस्म है। और इन किस्मों का बीज नेशनल सीड कॉर्पोरेशन तैयार करता है,
1: राष्ट्रीय बीज विकास
0: निगम, हाँ जी, वो तैयार करता है और सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज उनके ऑफिस हैं, तो किसान भाई वहाँ से इसका बीज ले सकते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, इसमें खासियत के जिस तरह इसका नाम है अफ्रीकन टाल, यानी कि लंबी,
0: ये लंबी बढ़ने वाली है, उसी से
1: कितनी बढ़ जाती है
0: ये लगभग 10 फुट तक बढ़
1: अच्छा।
0: जाती है, हाँ जी, दोनों ही ज़्यादा बढ़ने वाली किस्में हैं ये
1: जी।
0: दूसरा, यदि हम ज्वार, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन है इस सीजन में मक्का, ज्वार, बाजरा, ये मुख्य ऑप्शन है चारे के लिए
1: जी,
0: और इनमें मक्का सबसे अच्छा माना जाता है। उसका एक तो ये है कि इसका टेस्ट अच्छा है, पशुओं को अच्छा लगता है ये,
1: अच्छा,
0: दूसरे ज्वार और बाजरा के तुलना में
1: स्वाद लगा,
0: स्वाद लगता है
1: जी,
0: ये
1: जी।
0: और तेज़ी से बढ़ता है
1: जी।
0: दूसरा, गर्मियों में जो ज्वार है उसमें HCN हाइड्रोसाइनाइड एक केमिकल उत्पन्न होता है, जहरीला पदार्थ है और वो पशुओं के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता,
1: मतलब अगर उसमें देखभाल नहीं करी जाए, टाइम पर पानी वानी ना लगाया जाए,
0: हाँ जी,
1: तो उसमें वो जहरीला पदार्थ
0: जहरीला हो जाता है। इसलिए इस सीजन में मक्का सर्वोत्तम माना जाता है चारे के लिए
1: जी।
0: एक तो ये है कि हम चारे के लिए डायरेक्ट यूज करें, दूसरा ऑप्शन होता है साइलेज बना करके, क्योंकि जिस समय आपके पास हरा चारा काफ़ी मात्रा में है
1: जी,
0: उस समय सस्ता भी पड़ता है, तो आप ऑफ सीजन के लिए भी साइलेज बना करके रख सकते हो।
1: साइलेज मतलब उसको
0: संरक्षित कर सकते हैं उसको
1: जी। जिस तरह आप जब ज़्यादा बहुतायत में हमारे पास में गाजर मूली हैं तो उनका चार बना के रख लें,
0: बिल्कुल बिल्कुल जी, वो उसके, और पंजाब में तो ये लगभग 200 करोड़ का बिजनेस भी हो रहा है इसके,
1: अच्छा,
0: इसमें, हाँ जी,
1: अच्छा,
0: तो यहाँ भी संभावनाएं हैं, यहाँ भी धीरे धीरे कुछ किसान भाई इंटरेस्ट ले रहे हैं
1: जी।
0: और आने वाले समय में हम देखेंगे कि किसान भाई अपने लिए भी साइलेज बनाएंगे और बेचने के लिए भी बिजनेस के तौर पर भी इसको अपनाएंगे,
1: अच्छा, रोजगार का भी साधन,
0: रोजगार का भी अच्छा साधन होगा
1: जी।
0: उसके लिए किस्में थोड़ा अलग होती हैं
1: जी,
0: क्योंकि साइलेज, अच्छा साइलेज तभी बनता है जब उसमें अच्छे भुट्टे आए हों और दाना जो भुट्टे का है वो थोड़ा सख्त हो जाए,
1: अच्छा,
0: तो उसमें जितना अच्छा भुट्टा होगा उतनी अच्छा साइलेज बनता है, तो इसमें जो संकर किस्में हैं वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं, जिसमें एक हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो तैयार की गई HQM4, ये QPM है, क्वालिटी प्रोटीन मैच,
1: अच्छा,
0: इसकी क्वालिटी, प्रोटीन की क्वालिटी भी सुपीरियर है और बढ़वार में भी अच्छी है, तो NDDB ने टेस्ट किया था और उन्होंने देखा कि ये जितनी भी किस्में हैं मक्का की उसमें ये सर्वश्रेष्ठ किस्म है साइलेज के लिए,
1: अच्छा,
0: तो किसान भाई साइलेज के लिए भी जा सकते हैं
1: जी।
0: ये बात तो थी चारे के लिए मुख्य तौर पर, और इसमें चारे के लिए यदि हमने लगाना है तो लाइन से लाइन के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधे से पौधे की 15 सेंटीमीटर,
1: अच्छा, मतलब एक फुट कूट तक कूट का फासला,
0: हाँ जी,
1: और
0: आधा फुट पौधे से पौधा
1: जी,
0: तो इसमें लगभग 25 किलो बीज की जरूरत पड़ती है। लेकिन यदि आपने साइलेज के लिए करना है
1: जी,
0: तो लाइन से लाइन के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर यानी कि 2 फीट,
1: अच्छा,
0: और पौधे से पौधे की 20 सेंटीमीटर रखनी है, क्योंकि इसमें अच्छा भुट्टा चाहिए हमें साइलेज के लिए,
1: अच्छा,
0: और वो संकर किस्में हैं उसमें भुट्टा भी तभी आएगा जब उसकी सही आपस में
1: दूरी
0: होगी
1: जी।
0: अब बात आती है दाने के लिए, इसमें हरियाणा में 3 सीजन हैं जब हम कास्ट कर सकते हैं मक्के की दाने के लिए, जो एक तो बसंत कालीन है जो अभी चल रहा है
1: जी,
0: जनवरी 25 जनवरी से लेके 15 फरवरी बेस्ट समय है, और इस समय मैक्सिमम पैदावार आती है, 30-35 क्विंटल तक पैदावार दे जाती है प्रति एकड़
1: जी,
0: और कुछ किसान भाई हमें ऐसे मिलते हैं जो 40 क्विंटल तक भी क्लेम करते हैं एक एकड़ में, इतनी पैदावार आती है
1: जी,
0: क्योंकि इस समय ना तो कोई बीमारी आती और ये उसी जगह लगाई जाती है जहां उपजाऊ जमीन है, पानी के अच्छा आपके पास प्रबंध है
1: जी।
0: दूसरा जो समय है वो समय है खरीफ का बढ़ावा, उसमें सरकार चाहती है भाई किसी भी तरीके से खरीफ में मक्का के लिए बढ़े। हमें पता है हरियाणा के अंदर गेहूं और धान का मुख्य फसल चक्र है
1: जी,
0: और ये हमारी मजबूरी भी थी क्योंकि हम बाहर से अनाज इम्पोर्ट करते थे, तो धान की जो अच्छी किस्में आई शुरू में, IR 64 जाया वगैरह
1: जी,
0: और इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, बिजली की व्यवस्था हुई, और सारा जो एरिया मक्की का था वो धान में आ गया। अश्योर भी किया किसानों को कि हम परचेज करेंगे इसको MSP पे
1: जी,
0: इसलिए सारा एरिया धान में आ गया क्योंकि हमारे यहाँ अनाज की भी कमी थी
1: जी।
0: लेकिन उससे थोड़ा नुकसान भी हुआ कि क्योंकि धान में पानी बहुत ज़्यादा लगता है,
1: दोनों फसलों में ज़्यादा लगे,
0: दोनों में लगता है, धान में तो बहुत ज़्यादा लगता है
1: जी।
0: तो धान के उगाने की वजह से पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे गया, और आज तो हालात यह है कि हर साल 1 मीटर पानी नीचे चला जाता है
1: जी।
0: और यदि हमें इसको बचा के नहीं रखा तो आने वाली समय में, आने वाली पीढ़ियों के लिए पीने के लिए पानी की दिक्कत हो सकती है। किसी भी तरीके से धान की जगह दूसरी फसलें लगाए जो कि अपना जिनमें पानी की जरूरत कम है, उनमें से मक्का भी मुख्य एक फसल है।
1: इसके अलावा डॉक्टर साहब वो एक बीच में साठी धान लगाया करते,
0: हाँ जी,
1: तो उससे भी कुछ,
0: पहले साठी धान लगाते थे उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत होती थी और सरकार ने बैन करनी पड़ी वो
1: जी जी।
0: तो आज की किसी भी तरीके से मक्का की किसान भाई काश्त करें, लेकिन उसके बावजूद भी एरिया उतना नहीं बढ़ा। लेकिन अभी जैसे हिंदुस्तान में जगह जगह इंडस्ट्री लगाएंगे और इथेनॉल की प्रोडक्शन करेंगे मक्की से,
1: मक्का से,
0: हाँ जी,
1: अच्छा, अच्छा।
0: जिसमें कुछ इंडस्ट्री हरियाणा में भी लगेंगी, 4 इंडस्ट्री, डबवाली है एक, इधर यमुनगर के आसपास लगेगी, तो एक शहर के आसपास लगेगी। तो इस वजह से आने वाले समय में मक्का की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है, तो किसान भाई इसको लगाएंगे, इससे बहुत ज़्यादा किसानों को मुनाफा रहेगा
1: जी।
0: अब तीसरा जो सीजन है वो है रबी का सीजन
1: जी,
0: 25, ये जो अभी मैं खरीफ की बात कर रहा था, खरीफ का जो उपयुक्त समय है 15 जून से लेकर के और 20 जुलाई का समय है
1: जी।
0: 20 जुलाई के बाद यदि हम कास्त करेंगे तो आगे पकने में दिक्कत आती है, लेकिन यदि आपने स्वीट कॉर्न लगानी है तो स्वीट कॉर्न आप अपना पूरा जुलाई लगा सकते हैं और अगस्त में भी इसकी कास्त कर सकते हैं, सितंबर के फर्स्ट वीक तक भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पकाना नहीं होता हमें स्वीट कॉर्न को
1: जी।
0: और बेबी कॉर्न की कास्त पूरे साल कर सकते हैं आप, दिसंबर और जनवरी 2 महीनों को छोड़ करके।
1: बेबी कॉर्न वो जो छोटी,
0: हाँ जी,
1: कुकड़ी वो है,
0: हाँ जी। अब मैं अभी बताता हूँ कि मक्की कितने प्रकार की होती है, जो अभी तक हम अपने चारों तरफ देखते आए हैं उसको साधारण मक्का कहते हैं
1: जी।
0: ये हमें पता है कि ज़्यादातर मक्का फीड में इस्तेमाल होता है, कुछ खाने में भी इस्तेमाल होता है, और स्टार्च इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है स्टार्च बनाने के लिए, क्योंकि इसका फीड में इस्तेमाल हो रहा है और खाने में इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए इसकी गुणवत्ता अच्छी होनी, इसके अंदर ताकत अच्छी होनी जरूरी है
1: जी।
0: तो दुनिया में प्रयास किए गए कि इसकी गुणवत्ता बढ़ाई जाए, क्योंकि गेहूं से यदि तुलना करें इसके अंदर ताकत काफ़ी कम होती है
1: जी।
0: तो एक मक्का तैयार किया, उच्च क्वालिटी मक्का बोलते हैं उसको, QPM क्वालिटी प्रोटीन मेज, उसमें प्रोटीन की क्वालिटी है बहुत ही सुपीरियर है
1: जी।
0: लाइसिन और ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड होते हैं जो जरूरी हैं हमारे लिए, हमारा शरीर नहीं बना सकता, बाहर से लेने पड़ते हैं, तो उनके अंदर वो डबल मात्रा है उसकी आम मक्का की तुलना में। और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने इसकी 4 किस्में तैयार की है, HQPM 1, HQPM 4, HQPM 5 और HQPM 7।
1: अच्छा,
0: इनकी औसत पैदावार 25 से 27 क्विंटल प्रति एकड़ है और पूरे देश के अंदर इनकी काश्त की जा सकती है। ये आज भी जहाँ भी ट्रायल लगते हैं उच्च क्वालिटी मक्का के, तो इनको एज ए चेक यूज करते हैं, आज भी बेस्ट हाइब्रिड है ये।
1: अच्छा,
0: हाँ जी, तो इनकी भी काश्त कर सकते हैं इसमें, एक तो क्योंकि ये ताकतवर है इसलिए किसान भाई इनका फीड बना सकते हैं, इनके खाद्य पदार्थ बनाए जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी ने इसके बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हैं।
1: अच्छा,
0: और किसान भाई यदि इंटरेस्टेड हो यूनिवर्सिटी को लिख के दे तो इनकी ट्रेनिंग भी कराई जा सकती है, इसके बिस्कुट बेसन की तरह इसका इस्तेमाल करके बिस्कुट, केक और भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ इसके बनाए जा सकते हैं
1: जी।
0: तो ग्रामीण क्षेत्रों में इंडस्ट्री इस टाइप की भी लगाई जा सकती है, फीड की और फूड की। एक होता है बेबी कॉर्न, जैसे नाम से पता चलता है बेबी का मतलब बच्चा, दाना बनने से पहले जो गुल्ली होती है उसको बेबी कॉर्न कहते हैं। वैसे तो गुल्ली सभी में आती है, कोई भी मक्की हो
1: जी,
0: लेकिन बेबी कॉर्न के लिए बेस्ट वैरायटी हम उसको कहते हैं जिसमें एक पौधे के ऊपर कम से कम 3 छल्ली आए।
1: अच्छा,
0: और पहली तोड़ने के बाद दूसरी और तीसरी उनकी क्वालिटी खराब ना हो, वो बिल्कुल सीधी रहे
1: जी,
0: पैदावार ज़्यादा आई बेबी कॉर्न की और उसकी टेस्ट भी अच्छा हो, और साथ में जो चारा है, क्योंकि हमने बचे हुए पौधे को चारे के रूप में पशुओं को देना है तो चारे की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए जो बेस्ट किस्म है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो विकसित की गई है HM4 है।
1: HM4,
0: हाँ जी। बेबी कॉर्न में लगभग 7-8 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार आ जाती है
1: ये
0: बेबी कॉर्न की।
1: अच्छा, भुट्टा की।
0: भुट्टा की
1: जी।
0: और ये अपना लगभग मार्केट में जो थोक के रेट है 60 रुपये किलो रहते हैं, मतलब 6,000 रुपये क्विंटल
1: जी।
0: अटेरना गांव है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ कमल सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने 60 रुपये किलो रेट फिक्स किया हुआ है। अच्छा। वो कहते हैं ज़्यादा रेट बिकता है आप बेच लें बाहर मार्केट में, यदि कम बिकता है तो 60 रुपये मेरे को दे जाएं
1: जी।
0: और वो साल में लगभग 10 करोड़ की बेबी कॉर्न बेचते हैं।
1: अच्छा।
0: उन्होंने छोटे से स्टार्ट किया था और अब ऑटोमेटिक प्लांट लगाया हुआ है, और पहले हम बाहर से इम्पोर्ट करते थे बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न, आज हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं
1: जी। मतलब बाहर बेच सके,
0: बाहर भेज रहे हैं
1: जी।
0: कमल सिंह चौहान जी भेज रहे हैं कई कंट्रीज में, और अपना 4-5 कंट्री में बेबी कॉर्न और एक्सपोर्ट, ये अपना स्वीट कॉर्न वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं
1: जी। वैसे अपने देश में भी जो बड़े होटल वगैरह हैं इनमें,
0: हाँ जी, होटलों के अंदर भी काफ़ी डिमांड है। इसको हम सलाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका सूप बनता है, मिक्स वेजिटेबल में इस तो पिज्जा में इस्तेमाल होता है
1: जी।
0: और इसके भी सैकड़ों उत्पाद हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी बनाए गए हैं
1: जी।
0: इसकी भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोसेसिंग लगती है, इसके उत्पाद बनाने की लग सकती है, और पानीपत से इसका आचार एक्सपोर्ट हो रहा है, बाई एयर जाता है।
1: अच्छा,
0: बाहर
1: जी।
0: तो इस टाइप के बहुत सारी गुंजाइश है बिजनेस करने की इसमें बेबी कॉर्न में
1: जी।
0: इसका एक फ़ायदा हो रहा है कि हम जैसे चारे के लिए अलग से खेत खराब करते हैं, यदि हम बेबी कॉर्न या स्वीट कॉर्न की कास्ट करेंगे तो हमें ये पैसा मिलेगा, और साथ में चारा तो एक बोनस के तौर पर हमें वैसे मिल जाता है, 100 क्विंटल हरा चारा हमें मिल जाता है
1: जी।
0: खरीफ के मौसम में लगभग 60-65 दिन में बेबी कॉर्न तैयार हो जाता है और 100 क्विंटल हमें हरा चारा मिल जाता है। तो मेरी तो किसान भाई से गुजारिश यही है कि अलग से खेत खराब करने की बजाय चारे के लिए आप बेबी कॉर्न स्वीट कॉर्न की यदि कास्ट करेंगे तो हरा चारा तो आपको साथ में वैसे ही मिल जाएगा
1: जी।
0: अब बात आती है स्वीट कॉर्न की
1: जी।
0: स्वीट जैसे सबसे पता चलता है, स्वीट का मतलब मीठा, जो आम मक्का होती है उसमें 3% चीनी की मात्रा होती है, लेकिन स्वीट कॉर्न एक विशेष तरह की मक्का है जिसमें 7% शुगर की मात्रा होती है, चीनी की मात्रा होती है,
1: दोगुने से भी ज्यादा।
0: हाँ जी
1: जी।
0: और ऊपर का छिलका जो है बिल्कुल नरम होता है
1: जी,
0: और जो आदमी इसको एक बार टेस्ट कर लेता है वो ये दूसरी मक्की खा ही नहीं सकता, इतनी स्वादिष्ट होती है ये
1: जी।
0: पहले हम इसको इंपोर्ट करते थे, USA वगैरह से आती थी ये,
1: भारत में आते थे।
0: हाँ जी। आज इसकी पैदावार यहाँ पे अपना हरियाणा में काफी अच्छी पैदावार, मनोली गाँव है, पूरे गाँव के अंदर स्वीट कॉर्न की खेती होती है, और जिनकी कमल सिंह जी की मैं बात कर रहा था उन्होंने तो इसके दाने निकालने की मशीन भी लगाई हुई है
1: जी।
0: तो हम अपना पहले इसको इंपोर्ट कर रहे थे और आज ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम इसको
1: दूसरे देशों में भेज रहे हैं।
0: एक एकड़ में लगभग 60 क्विंटल हरी छल्ली निकल जाती है स्वीट कॉर्न की।
1: अच्छा।
0: और 100 क्विंटल के करीब हरा चारा मिल जाता है, 75 दिन की फसल है खरीफ के मौसम में
1: जी।
0: तो ये आपकी 70-75 हज़ार की, तो 12 रुपये किलो थोक के रेट रहते हैं, यदि आप रिटेल में लेने जाओगे मंडी के अंदर 35-40 रुपये प्रति किलो मिलती है आपको
1: जी।
0: और इसके भी बहुत सारे उत्पाद बनाए जा सकते हैं इसमें। अभी अपना द्यामला गांव है यमुनगर के पास
1: जी,
0: वहाँ धर्मवीर कंबोज जी हैं एक, जिन्होंने राष्ट्रपति से अवार्ड भी मिला है मल्टीपर्पज मशीनों के लिए। उन्होंने पीछे प्रोग्राम किया था, हमारे वाइस चांसलर साहब और डायरेक्टर साहब मेज के वो भी बुलाए हुए थे, उन्होंने दूध निकाला स्वीट कॉर्न का
1: जी,
0: उसके बाद आइसक्रीम बनाई।
1: अच्छा।
0: कुल्फी बनाई
1: जी,
0: और पनीर की जगह इसमें समोसों में इस्तेमाल किया, पिज्जा में इसका इस्तेमाल होता है, सभी को पता है
1: जी,
0: सूप बनता है। तो इसके आने वाले समय में इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी कई गुना
1: जी,
0: कि इसकी अभी यहाँ बहुत ज़्यादा मार्केट होने वाली है, और अभी तक तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 1% लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं है। जैसे जैसे जानकारी बढ़ेगी इसकी कंजप्शन, इसकी खपत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है आने वाले समय में, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। आज हमारे पास देश में बहुत अच्छे हाइब्रिड हैं स्वीट कॉर्न के, जिनकी हम कास्ट कर सकते हैं। तो अपना जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपको 70-75 हज़ार रुपये की तो आपको ये स्वीट कॉर्न मिलेगी, और साथ में आपको 100 क्विंटल हरा चारा भी मिलेगा बोनस के तौर पर। इसकी खेती करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं
1: जी।
0: अब बात आती है कि इनकी उसकी बिजाई के तरीके की, जो साधारण मक्का है जो दाने के लिए लगा रहे हैं हम, या स्वीट कॉर्न लगा रहे हैं, 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन के बीच की दूरी रखनी है हमने, और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी है,
1: यानी 2 फुट तक फुट। हाँ जी। और 2.25 के करीब।
0: हाँ जी, पौधे से पौधा
1: जी।
0: स्वीट कॉर्न में यदि

0: 20 सेंटीमीटर पे रखेंगे या 25 पे रखेंगे, पैदावार सेम आती है, लेकिन 25 सेंटीमीटर रखने से भुट्टा मोटा आता है और
1: जी
0: उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा मिलती है।
1: जी
0: तो किसानों के लिए और भी अच्छा है कि उसमें बीज भी कम लगेगा,
1: जी
0: भुट्टा और इसका प्राइस भी मार्केट में ज़्यादा मिलता है। तो इसकी ये इस तरीके से आप कास्ट कर सकते हैं स्वीट कॉर्न की। और बेबी कॉर्न के लिए हमें, जो बेबी कॉर्न है उसके लिए लाइन से लाइन के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर यानी कि 2 फीट,
1: जी
0: और पौधे से पौधे की 15 सेंटीमीटर रखनी है,
1: इसमें
0: क्योंकि
1: घटास
0: उसके
1: का है
0: अंदर पौधे हमें ज़्यादा चाहिए।
1: जी।
0: भुट्टा मोटा साइज नहीं करना, मोटा करने के बाद उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। एक ही होता है, इसमें झंडे निकालने पड़ते हैं हमें बेबी कॉर्न में,
1: अच्छा
0: ताकि उसमें परागण की क्रिया नहीं हो। परागण की यदि क्रिया हो जाती है तो दाना बनना शुरू हो जाता है और क्वालिटी ख़राब हो जाती है। लेकिन अब ऐसी किस्में भी आ गई हैं जिनके अंदर जो ये
1: झंडा
0: प्राकण है
1: जी
0: वो मरे हुए होते हैं, उनको
1: अच्छा
0: मेल स्टाइल कहते हैं।
1: जी
0: और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के जो HM4 किस्म थी हमारी,
1: जी
0: उसको मेल स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया है। उसके अंदर अब ये परागण
1: प्रागण
0: नहीं आते, मरे हुए आते हैं,
1: जी
0: इसलिए झंडे निकालने की भी जरूरत नहीं है।
1: जी
0: तो ये तो थी इसकी बात। अब बात आती है बीज उपचार की।
1: जी
0: 4 ग्राम थीरम
1: जी
0: और 7 ml इमिडाक्लोप्रिड, इनसे बीज उपचार करें तो शुरू में
1: ये
0: होने,
1: डॉक्टर साहब सूखा करना है या किस तरह करना है?
0: इसमें हल्का सा थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेते हैं जिससे कि ये चिपक जाए।
1: चिप चिप हो जाए
0: हाँ जी।
1: जी
0: और जो उपचार करने के बाद जो शुरू की अवस्था में कीट लगते हैं और बीमारी लगते हैं, उनसे रोकथाम में इससे मदद मिलती है।
1: जी
0: अब बात आती है कि मक्का से ज़्यादा मुनाफा लेने का तरीका यही है कि हम ज़्यादा पैदावार बढ़ाएं, एक खर्चे घटाएं अपने, एक प्रोडक्ट बनाएं खुद और खुद
1: जी
0: इसकी मार्केटिंग करें, तब हमें ज़्यादा अच्छा मिल सकता है।
1: डॉक्टर साहब, इसमें खाद पानी का के कुछ हिसाब किताब रखना पड़ेगा?
0: इसमें खाद 1 बैग DAP
1: अच्छा है
0: और 40 किलो पोटाश, 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट, ये बिजाई के समय डालने हैं।
1: जिंक सल्फेट पहले डाल रखी हो तो गेहूं में जिस तरह हमने
0: यदि
1: डाल दी
0: पहले डाली
1: तो
0: हुई तो आप टाल भी कर
1: टाल कर
0: सकते हैं
1: सकें
0: इसकी।
1: इसको।
0: हाँ जी।
1: अच्छा
0: और
1: तो ये
0: जिस
1: बिजाई के टाइम देनी है
0: ये
1: तो?
0: बिजाई से पहले डालनी है जी।
1: अच्छा
0: और
1: सारी
0: यदि,
1: मात्रा?
0: हाँ जी,
1: सारी
0: पूरी
1: मात्रा
0: मात्रा पहले डालनी है
1: ठीक है
0: और मशीन से बिजाई करते हैं करनी है। यदि आजकल न्यूमेटिक प्लांटर भी आ रहे हैं, वो बिल्कुल ही 2-2.5 सेंटीमीटर पे बिजाई करते हैं
1: जी।
0: और हर बीज एक, उसमें एक बीज डालते हैं तो उसमें 100% जर्मिनेशन होती है।
1: उगा होगा उसमें?
0: और न्यूमेटिक बेड प्लांटर आ रहे हैं जिनमें कि दोनों साइड में बिजाई करता है वो,
1: अच्छा
0: तो उससे जो ये खूट बनते हैं वो भी आधे बनते हैं,
1: अच्छा
0: इसलिए पानी की भी जरूरत कम पड़ती है। तो
1: जी
0: न्यूमेटिक प्लांटर से, यदि वाइट बेड प्लांटर न्यूमेटिक प्लांटर से बिजाई करेंगे किसान भाई,
1: जी
0: पानी की भी खपत कम होगी और जर्मिनेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी उसकी।
1: जी पानी इसमें कितने चाहिए कुल मिला
0: पानी
1: के?
0: खरीफ के मौसम में लगभग 5 से 6 पानी की जरूरत पड़ती है।
1: अच्छा
0: और जो सबसे मुख्य वो अवस्थाएं हैं पानी की,
1: जी
0: एक तो है कि जब हमारी सीडलिंग स्टेज हो, पौध अवस्था है,
1: जी
0: एक जब घुटने तक आती है, एक जब फूल आते हैं, एक जो दूध अवस्था होती है और एक जब डफ अवस्था, जब वो दाना सख्त होता है,
1: जी
0: ये अवस्थाएं हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिस समय हमें पानी हर हालात में लगाना चाहिए।
1: जी
0: तो ये जो खास तौर पे ये जो अब बसंत काल का मौसम चल रहा है, कई किसान भाई क्या करते हैं, इसमें लास्ट में धान जल्दी रोपाई करने के चक्कर में आखिर वाला पानी छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं कि जल्दी पक जाएगी।
1: जी
0: लेकिन किसान भाई ऐसा ना करें, ऐसा करने से लगभग 15 से 20% पैदावार में गिरावट आती है। तो
1: अच्छा
0: आखिरी पानी जब दाना सख्त होने लग रहे हो, उस समय पानी जरूर लगाएं, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। एक और है कि खरपतवार, ये भी एक मुख्य समस्या है
1: जी
0: जिसकी वजह से पैदावार में काफ़ी गिरावट आ जाती है। बिजाई के बाद हल्का सिंचाई करें हल्की,
1: जी
0: और 2-3 दिन के बाद जैसे पांव रखने लायक स्थिति हो जाए, 400 से 600 ग्राम एट्राजिन 200
1: एट्राजीन
0: लीटर पानी में घोल करके
1: जी
0: छिड़काव करें।
1: जी
0: तो ऐसा करने से 15-20 दिन तक, लगभग 20 दिन तक खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। यदि खरीफ के मौसम में कई बार बरसात होने के कारण
1: जी
0: एट्राजिन का स्प्रे ना किया गया हो, तो किसानों के भाइयों के पास एक दूसरा ऑप्शन भी है। एक केमिकल आता है लोडिस,
1: लोडिस?
0: हाँ जी, लोडिस के
1: अच्छा
0: नाम से आता है, 115 ml लोडिस,
1: जी
0: 400 ml उसके साथ चिपचिपा पदार्थ आता है सर्फेक्टेंट,
1: जी
0: 200 लीटर पानी में घोल करके, और साथ में यदि उसमें एट्राजिन भी डाल लें 400 ग्राम और उसका छिड़काव कर दें, तो जो भी खरपतवार होगा सारा खत्म हो जाएगा और एट्राजिन अगले 15 दिन तक उसमें जमाव नहीं होने देगी खरपतवार को। तो ये एक बहुत अच्छा वो है, इससे किसान भाइयों के खर्चे भी घटेंगे जो खरपतवार नियंत्रण पे खोदी पे होते हैं
1: जी।
0: तो ये इससे अपना किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा होगा
1: जी।
0: अब जो उच्च क्वालिटी की मैं बात कर रहा था, आज हमारे पास प्रो विटामिन ए
1: जी
0: रिच किस्में भी हैं।
1: अच्छा,
0: पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने HQPM 1 और HQPM 5 जो हमारी किस्में थी उच्च क्वालिटी मक्का की, उनके अंदर प्रो विटामिन ए भी डाल दिया है।
1: अच्छा,
0: तो ये बहुत ताकतवर हो गए हैं। सभी को पता है कि प्रो विटामिन ए हमारी बहुत सारी बॉडी की फिजियोलॉजी के लिए जरूरत पड़ती है, आंखों के दृष्टि के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो आने वाले समय में किसान भाइयों के उनके भी बीज मिलेंगे
1: जी,
0: और किसान भाई उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा फायदा उठा सकते हैं
1: जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया है कि बढ़िया किस्मों का चुनाव करें और अपना इस तरह की किस्म लगावें कि जिस तरह आपने भुट्टे भी मिल जाए और चारा भी आपका उसकी मांग पूरी हो जाए। और जिस तरह आपने बताया कि अगर उद्योग की तरफ जाएं या इसका कोई ना कोई उत्पाद बना के बेचें तो वो सोने पे सुहागा का काम करेगा और एक्स्ट्रा मुनाफा है वो इसमें कर सकते हैं। तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर मेहरचंद कंबोजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सर, धन्यवाद आपका बहुत।
2: भाइया ने या तो बातचीत सुन ली और ईव टाइम हो रहा है मनोरंजन का, एक रागनी सुन लिया जिसके गायक कलाकार रहेंगे रमेश कुमार सैनी और उनके साथी।

ਪਵਨ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨ

भाईजान रागनी सुनी, जिसके गायक कलाकार थे रमेश कुमार सैनी और उनके साथी। और जिक्र कराएं वे अपने पशुधन का, तो गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम में पशु ने ताज़ा पानी चाहिए, खनिज लवण मिश्रण चाहिए, उसने नमक की मात्रा चाहिए, उसने गुड़ की मात्रा चाहिए, और सबसे ज़्यादा उसने चाहिए कि पूरे साल हरा चारा मिल जाए। हरा चारा जब मिलेगा, जब हम पहले इसकी रूपरेखा तैयार कर लेंगे, कोई एरिया, कोई सा क्षेत्र, कोई खेत का ईसा छोड़ लेंगे कि उस माह उसका बुआरा कर सका। जो डॉक्टर साहब ने जिक्र कराया था कि मक्का, मक्का अम्बोस का, हाँ और भी कई ईसे घास हैं जो पूरा साल चले जाए हैं, उनका बुआरा कर लें। अगर जैसे ही इबे बारिश शुरू हो जाएंगी तो फिर तो घास हमारे द्वारा बहुत सारा हो जाएगा, और पहले कुछ थोड़ा सा जितना भी हम बुआरा कर सका, बीज ले आकर साफ सुथरा कितने ज्वार बोस का, हाँ कोई और दूसरा जो चारा है उसका बुआरा करा, बाजरा भी बोगा अगर जाकर। फिर वैसे भी देखा जाए तो फिर तो न्यू का करें भाई, खाल खोल कितने डोले हैं, रास्ते हैं, उन पर भी इतना घास हो गया है और ईंख में भी हो गया है, फिर हमने अरे चारा की कोई दिक्कत नहीं रहती है। लेकिन एक ही सा मौका वो है, इस टाइम पर बरसम तो हो जाए ख़त्म और अगला चारा जो साथ के साथ ना रहे तो पशु खुश हो गए, चारा नहीं खाँदा। न्यू कहते हैं भाई दूध तो घट गया, वो दूध तो घटने के कई कारण हो जाए हैं, कुछ तो मच्छर शुरू हो जाए हैं, उसे मच्छर तो इब पशुओं के हिसाब के नहीं हुए हैं क्योंकि गर्मी पड़े है, पशुओं के हिसाब के तो थोड़ा सा जब बारिश शुरू हो जाए उस टाइम पर शुरू हो जाएंगे। तो अपना अपने पशुधन की संभाल भी करनी है और सारे जो अपने खेत क्यार के काम है वो भी सारे निपटाने हैं। मौसम का पहले हिसाब बता दिया था कि इब एक दो दिन मौसम में और थोड़ा सा तापमान बढ़ सके है, उसने देखकर अपने जो काम दाम है वो अपने कर दे रहे हैं। बाकी कल का कृषि जगत कार्यक्रम की बात करा तो कल बर अभी फसलों का जो भंडारण का जो टाइम है उसके बारे में चर्चा करी जाओगी, बातचीत सुनवाओगे भैया ने, और कुछ घड़ी का इशारा देखा तो ऐसा है कि जो अपना कार्यक्रम है कृषि जगत वो इबे इतना ही। अगला कार्यक्रम सुनेंगे ग्रामीण संसार, और ग्रामीण संसार में आज का दिन देखा तो शनिवार का दिन है, तो आज बारी है कार्यक्रम आपकी पसंद की, तो सुन लिया। आपकी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सारे बण भाइयों ने दलजीत भाई की राम राम। भाइयों कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे मारी धरती मारी माँ हरियाणवी फिल्म का इस गाने थे, जो गाया है बाल सिंह, सविता और उनकी सखियां ने, और इस गाने ने सुनन खातर अपनी फरमाइश भेजी है गांव पांडू पिंडारा जिला जींदते बादल सिंह गिल, कमलेश राणी, टीनू, प्रीति, डॉक्टर वाणिका और डॉक्टर अंकित गिल। इस गाने ने पसंद करे हैं गांव इसराणा जिला पानीपत सतबीर सिंह जागलन, दीपक, संदीप, सोनू, अंगूरी और चांदकोर। यह एक चिट्ठी और इसराणा जिला पानीपत आई है और पसंद भेजने वाई हैं रमेश जागलन, चरण सिंह जागलान, सिंह राम और मास्टर रामेर। यह चिट्ठी आई है जतुका किशनपुर ते और पसंद भेजनी है आलम दिलकश, सबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, सबाना आजम, चांदनी नाज और सिराजपुर गणेशपुर ते। ये हमारे श्रोता हैं इना कैसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज परवीन। इसे गाने ने पसंद करे हैं गोला बाजार बक्सर ते सरदानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। आदर्श गांव बलियाली जिला भिवानी ते हमारे श्रोता हैं दर्शनलाल बंसल, सुदेश राणी, प्रवीण कुमार, ममता राणी, कमल कुमार, गर्विश और तमन्ना बंसल। और इसे गाने ने पसंद करे हैं ये हमारे श्रोता हैं चौधरी वास्ते राजू अग्रवाल, केशव, दक्ष, विवेक, प्रयाग और प्रियंशी। तो सब सुने मारी धरती मारी माँ हरियाणवी फिल्म का यो गाना।

0: मेरा दिल धड़के
1: बलमा मेरा दिल धड़के
0: चोरी मेरा दिल धड़के
1: सजना मेरा दिल धड़के।
2: भाई ने यू तो हरियाणवी फिल्म का गाना सुना। हरियाणवी फिल्म थी मारी धरती मारी माँ। और कार्यक्रम की अगली रागनी सुनांगे करण सिंह भटगामिया और उनके साथियों की गाई ओड़ और पसंद भेजी है आप सबने। आप हैं गांव बिरौली जिला जींद ते सुरेंद्र सांगवान, सचिन और अंकित सांगवान, आदर्श नगर मलोट पंजाब ते राज शर्मा मीना योगेश सौरव और उनके परिवार के सदस्य, गाँव फरासी ते राजकुमार डूडी सरजीत सिंह और प्रमोद कुमार डूडी, आसी शहर ते राजू मिगलानी बबीता सुभाष योगी बब्बू और डब्बू, पटेल नगर मलोट पंजाब ते मरे श्रोता हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया। तो सब सुने अपनी पसंद पर करण सिंह भटगामिया और उनके साथियों की गाई उड़ याराग्नि।
3: भाई मैं क्यों कर जीवन का

दिल्ली की दलाली के माँ पेट रहता खाली रह भाई कोई कैसे ई छोरे न सर पे धरती ठाली रह मल्ले लच्चे पैरू तमने कड़े चीर के जावे से खाना पीना गर्म कोना।

भैया ने रागनी सुनी। गायक कलाकार थे कर्ण सिंह भटगामिया और उनके साथी। कार्यक्रम की अगली रागनी सुनांगे रणबीर सिंह बड़वासिनिया और उनके साथियों की गाई ओड़े और किस्सा रहेगा राजा हरिश्चंद्र का। इसने पसंद करे हैं महेंद्रगढ़ ते ममता गांधी, विकास वंश दिया नोनू सगुन और विकी गांधी। आप हैं गादी जनपद बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे बहुत पुराने श्रोता काशीराम दलाल, बलदेव सिंह आर्य, रामफल दयानंद, धर्मवीर नितिन, अर्पित हरिओम, ओमपाल, सन्नी, निमेश, अनुज और रिडकुमल। सिसाए इशारते चिट्ठी आई है और पसंद भेजने भाई हैं अनूप, दिनेश, बलवान, बाली, चमन, रणधीर, सुरेंद्र और दीपांशु। और छापरौली उत्तर प्रदेश से ईशराग्नि ने पसंद करे हैं जसवंत सिंह खोखर, राम कुमार, अनिल, सुनील कुमार, प्रवीण, सुमित, विनीत और उनका खोखर परिवार। गांव देवरड़ ते श्रीराम चैल, वीर सिंह चैल, मास्टर ओम, बलवान, धर्मचंद, दयाकिशन काला और मास्टर रणधीर। तो सब सुने अपनी पसंद पे रणबीर सिंह बड़वासिनिया और उनके साथियों की गाई उड़ यारागनी।

भजन रागनी सुनी, जिसके गायक कलाकार थे रणबीर सिंह बड़वासिनी और उनके साथी। और कार्यक्रम के आखिर में सुनेंगे धर्मवीर सिंह और उनके साथियों की गाई और रागनी, और पसंद भेजनी है आप सब। गांव चिड़िया दूध व चरखी दादरी थे सोनू मंजी तनिष और संगोलिया परिवार। खेड़ी दौलतपुर थे प्रीत सिंह बिंटू और संजय कुमार। लोको कॉलोनी लवारू थे बिल्लू सिंह चंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा, योगेंद्र कुमार और नरेंद्र कुमार। खेड़ी चौपटा थे हमारे श्रोता हैं पंडित सत्तारेड्डी, राजा राम पुनिया, रामेर शर्मा और किताब सिंह सौराण। गांव लुदेसर थे पप्पूराम गाठ, संतोष देवी, लक्ष्मी देवी, प्रियंका साक्षी और रुचिका देवी। अलेवा जलाजीन थे नरेश लोहान, जोगिंदर लोहान और राजकुमार लोहान। जाटू लुवारी तय चिट्ठी आई है रामफुल, हरिराम, मदन, साधुराम और आवा सिंह, ईश्वर अग्नि ने पसंद करे हैं। तो सुने इन सब की पसंद पे धर्मवीर सिंह उनके साथियों की गाई उड़ या रागनी।

भजन रागनी सुनी, गायक कलाकार थे धर्मवीर सिंह और उनके साथी। कार्यक्रम कैसा लगा या बताएं, और अपनी पसंद की रागनी सुनने खातर आप भी चिट्ठी भेजें। कार्यक्रम का पता है, कार्यक्रम आपकी पसंद, द्वारा केंद्र निर्देशक, आकाशवाणी रोहतक, पिन कोड 1240001। और ईब घड़ी का इशारा दलजीत भाई ने इजाजत दें, सारे बण भाइयों ने राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण संसार, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म यादें से। इस गीत को गाया है हरिहरन और साथियों ने, लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

महालक्ष्मी अय्यर और सुनिधि चौहान की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म यादों से ये गीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत, फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई से। इस गीत को गाया है कुमार शानू और अलका याग्निक ने, लिखा है कतील शिफाई ने और संगीत दिया है अन्नू मलिक ने।

श्रोताओं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में, फिल्म तू झूठा मैं मक्कार से। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म अंजाम से। इस गीत को गाया है अभिजीत ने, लिखा है समीर ने और संगीत दिया है आनंद मिलन ने।

कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म तमाशा से। इस गीत को गाया है मोहित चौहान ने, लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है AR रहमान ने।

स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने वाले हैं और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में अगला गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म हिम्मत वाला से। शब्द रचना है इंडीवर की और संगीत से सजाया है बप्पी लहरी ने।

अगला गीत सुनेंगे सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में, फिल्म जिला गाजियाबाद से। इस गीत को लिखा है शब्बीर अहमद ने और संगीत दिया है अमजद नदीम ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनते हैं केके की आवाज़ में, फिल्म बजरंगी भाईजान से। इस गीत को लिखा है कौसर मुनीर ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

को यहीं संपन्न करते हैं, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम सुगम संगीत में पहली गजल आपको सुनवाएंगे ए एस जग्गा की आवाज़ में।

0: इसी गज़ल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत को यहीं समेटते हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार और ठीक 9 बजे अंग्रेज़ी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्रपत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थ

0: न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लेटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कार्यक्रम एक फिल्म से में आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म इंतहा के कुछ गीत। आइए सुनते हैं अगला गीत शान और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। राहत इंदौरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने।

कार्यक्रम में आखिरी गीत सुनेंगे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में, फिल्म इंतहा से। इस गीत को लिखा है राहत इंदौरी ने और संगीत दिया है अन्नू मलिक ने।

0: कार्यक्रम एक फिल्म से में आज हम अपने आपको सुनवाए फिल्म इंतहा से कुछ गीत। कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, अब आप सुनेंगे राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
2: लाइट, साउंड, कैमरा,

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: तारंगा तेरी याद में।
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जी डी माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकोड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का

श्री पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाई चाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 एम वी रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म एवी मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब यहां जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म एस एम श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिलेक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था। इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी। फिल्म दो कलियां एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
1: चल चल चल मेरे साथी ओ मेरे हाथी।
0: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी। दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जय ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

0: चूंकि जिक्र के एस सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली।
1: जूली, I love you।
0: सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन 1967 में आई मलयालम फिल्म कुचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजू का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता के अभिनय वाली फिल्म फर्क
2: मस्त।

फिल्म फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाईच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक दूजे के लिए।

0: सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राज खोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक थी।

0: क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: ओ शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
2: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है।
3: मेरे पास माँ है।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटनीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।
4: ओ न रोना के तू

मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख सहती हैं।

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपने बेटे से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: पर मां के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में मां यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के सैफखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाने आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हें मुझे छोड़ के जा रहे हो।
2: बेटे, बड़ा सौदागर बन गया है रे, मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके

0: नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।
1: सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो।
0: फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है, एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है, नए सिरे से अपनी पहचान बनाती है। सन 2018 में आई बधाई हो, इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक

0: 90 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है। वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमी पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं।
0: फिल्म ABCD2।
2: जब जब मुझे पे उठा सवाल मारी तेरी चुनरिया लहरा।
0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
3: मेरे पास माँ है।
0: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

0: संगीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।

0: ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश।
1: दर आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
2: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं। क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो LB लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नयन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: ओहो,
2: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों, कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नैन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नैन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता। मैंने मेरे हाथ में किधर है
1: जी।
2: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।

0: मैंने खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा, और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और मैं चला जा रहा हूं, और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना, मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन कि हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन दिन, इतना बड़ा मुखड़ा। मुझे पता नहीं कैसे क्यों कैसे याद हो जाता था दादा के साथ, मालूम नहीं।

0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग। स्मृति शेष। एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

0: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। पंडित कैवल्य कुमार गुरव सुप्रसिद्ध संगीत तज्ञ पंडित संगमेश्वर गुरव के सुपुत्र हैं। उन्होंने अपने संगीत की शुरुआत 15 वर्ष की आयु में मराठी नाट्य संगीत से किया। इसके उपरांत उन्होंने ख्याल गायकी के ओर रुख किया और अपने पिता एवं गुरु पंडित संगमेश्वर गुरु के मार्गदर्शन तथा वर्षों की कठिन एवं निरंतर साधना के माध्यम से किराना घराने की परंपरा को आत्मसात किया। उनकी संगीत साधना केवल एक घराने तक सीमित नहीं रही, उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा कर विभिन्न घरानों की शैली, तकनीक और भावधारा का गहन अध्ययन किया तथा उसे अपने गायन में सफलतापूर्वक समाहित किया। उनकी इसी विशिष्ट साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें 32 वर्ष की आयु में भारत सरकार द्वारा टॉप ग्रेड कलाकार का सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बीकॉम, संगीत में बीए तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से संगीत में एमए स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त किया है और आपको कर्नाटक सरकार का राज्य पुरस्कार, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी राष्ट्रीय सम्मान ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप देश और विदेश में कई प्रमुख मंचों पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित कैवल्य कुमार गुरव। पंडित कैवल्य कुमार गुरव इज अ रिनाउंड म्यूजिशियन एंड डिसाइपल ऑफ पंडित संगमेश्वर गुरव। ही स्टार्टेड हिज म्यूजिकल जर्नी एट द एज ऑफ 15 विद मराठी नाट्य संगीत। After that, he turned towards khayal singing and through the guidance of his father and guru, Pandit Sangameshwar Gurav, absorbed the traditions of Kirana Gharana through rigorous practice and dedication. His musical practice was not limited to just one Gharana. He travelled across India, deeply studying the styles, techniques and emotional expressions of various Gharanas and successfully incorporated them into his singing. As a result of this exceptional dedication, he was honored with the title of Top Grade Artist by the Government of India at the age of just 32. Pandit Kaivalya Kumar Gurav has performed his music not only across India but also in many countries around the world. He has been awarded an honorary doctorate by Sorbonne University, Paris of France. Dr. Kaivalya Kumar Gurav has been honored with more than 200 awards worldwide.
0: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित जडेश होगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे हैं। पंडित कैवल्य कुमार गुरव अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग दुर्गा से कर रहे हैं। इसमें तीन रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल, रस कानारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पिया से। उसके बाद द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर। आइए सुनते हैं राग दुर्गा।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित जडेश हुगार एंड ऑन द हारमोनियम बाय डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी। पंडित कैवल्य कुमार गुरव बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विथ राग दुर्गा, रूपक ताल, रस कान्हारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पियासे, द्रुत तीन ताल, चतुर

0: अब तक आप सुन रहे थे राग दुर्गा। पंडित कैवल्य कुमार गौरव जी अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग आभोगी। इसमें दो रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।
1: दैट वॉज राग दुर्गा। नाउ यू विल लिसन टू राग अभोगी। रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित जडेश हुगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया गया।
1: That was राग अभोगी। With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to a vocal recital by Pandit Kaivalya Kumar Gurav. He was accompanied on the tabla by Pandit Jadesh Hugar and on the harmonium by Dr. Sudhamshu Kulkarni. This program was recorded earlier in the studios of Akashwani Dharwad and relayed from Akashwani Delhi.

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार और ठीक 11:05 पर अंग्रेज़ी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएँ होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts, and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
1: 21st sadi ka Bharat avsaron ki bhumi hai. Bharat technology driven bhi hai aur humanity driven bhi hai. Bharat jitna ancient hai utna hi modern ban raha hai. और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा
2: Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he is attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praised the contribution of the Indian diaspora. Later, Prime Minister Narendra Modi met King Willem-Alexander and Queen Maxima of Netherlands during the second leg of his five-nation visit. Prime Minister Narendra Modi was today presented with the historic 11th century Chola copper plates by authorities of Leiden University during his official visit to the Netherlands. The return of the priceless artifacts marks a landmark moment in India-Netherlands cultural cooperation and heritage restitution. The Prime Minister reached the Netherlands last night on the second leg of his five-nation tour. After concluding his visit to the Netherlands, Mr. Modi will travel to Sweden tomorrow. India and Sweden share a legacy of trade and people-to-people ties spanning over a century, rooted in mutual respect, peaceful coexistence, and the principle of ahimsa. Today, this relationship is evolving from its cultural foundation into a robust industrial and economic partnership. In a conversation with Akashvani, the Ambassador of India to Sweden, Anurag Bhushan, emphasizes that the Prime Minister's upcoming visit is set to further cement the ties between the two nations. Head of Engineering and Product Development at Artifacts in Sweden, Per Stenfeldt, expressed optimism about stronger industrial collaboration and greater business opportunities between India and Europe arising from the India-European Union Free Trade Agreement. Electronics manufacturing company Tata Electronics and Dutch semiconductor equipment major ASML have joined hands to enable chip manufacturing in India. The pact was announced during Prime Minister Narendra Modi's visit to the Netherlands. ASML is known for having a monopoly in a category of lithography equipment which is critical for production of advanced small-size semiconductors. A Delhi court today sent the prime suspect in the NEET paper leak case P.V. Kulkarni and another accused Manisha Wagmare to CBI custody for 10 days. Special CBI judge Ajay Gupta ordered the remand after the probe agency submitted that the DO needed to be taken outside the national capital for further investigation and that the larger conspiracy had to be investigated. In IPL cricket, chasing a target of 248 runs, Gujarat Titans were 177 for 1 in 16 overs against Kolkata Knight Riders in Kolkata when reports last came in. Put into bat first, Kolkata Knight Riders posted 245 for 2 in the stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
3: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। समय हुआ है रात्रि के 11:10 और 8 सेकंड। अब हमारे आज के प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर कल प्रातः 5:55 पर आपसे फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद।